0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: कल 14वीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है महताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फें तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप, मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो
2: मतलब
3: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
2: दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहे हैं,
3: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
2: क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: है तो मेरा यूरिन
2: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है करके जा,
3: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है जाके।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसा।
2: हाँ ठीक है, देख ले
3: भाई।
2: हाँ ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जों मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता है। गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहिउद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पायोस को साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: की। मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: जी इट्स हॉट।
1: फैयाज हाशमी साहब की कलम और फरीदा खानम जी की एवरग्रीन आवाज में सुनी हमने हम सब की पसंदीदा गजल आज जाने की जिद ना करो। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अभी तो इस सफर के दूसरे पड़ाव में ही है हम। अभी कहीं जाने का इरादा नहीं है मेरा। मुझे ना धीरे धीरे ये पता चला कि फेसबुक में वो इन रिलेशनशिप और सिंगल के ऑप्शन के साथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला ऑप्शन क्यों होता था। इंसान ऐसा जानवर है ना जो इतनी रेंज ऑफ इमोशंस को महसूस कर सकता है कि खुद उसे ना समझ आए वो क्या कर रहा है। दो शेर देखें जिनमें इश्क का कॉम्प्लिकेटेड नेचर साफ दिखाई देता है। आरजू लखनवी साहब लिखते हैं, दिल की जिद इसलिए रख ली थी कि आ जाए करार, कल ये कुछ और कहेगा मुझे मालूम ना था। ओए होए। और दूसरा मेरा बड़ा पसंदीदा शेर खुमार बाराबंकवी साहब की कलम से, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। उफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता था। खैर अब खुमार साहब की बात छिड़ ही गई है तो उन्हीं की कलम से हरिहरन जी की आवाज में अगली गजल, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ओनली ऑन मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री, ठीक है। और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका ये बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर।
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं, आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।
3: ये

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पायल्स को साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्ची के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरजादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल

गजल याद आती है मुझे। वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने। हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल, जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें कुमार बाराबंकवी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
2: अब
4: मिर्ची का
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और बीमार होना चाहता है। अकबर इलाहाबादी साहब का एक बड़ा उम्दा शेर है कि इश्क के इजहार में हर चंद रुसवाई तो है, पर करूं क्या, अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज। 3

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपकी नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस पूरी फिल्म में जया बच्चन के जितने भी शॉट थे ना, उनको बस हाफ प्रोफाइल तक रखा गया था पुरानी जीन्स पे। हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। आज जिस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं वो है मूवी चुपके चुपके। ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, जया बच्चन थी इसमें, एंड जया बच्चन वॉज एक्चुअली प्रेगनेंट ड्यूरिंग द शूट ऑफ द फिल्म। तो उनकी जितने भी शॉट लिए गए ना, उनको सिर्फ हाफ तक रखा गया था, मतलब कहीं पे भी उनकी बेली को नहीं दिखाया गया है। तो आज इस फिल्म के बारे में ना ढेर सारी मिलकर के गप्पे करेंगे, इनके बहुत सारे गाने भी होंगे, ओनली विद मी श्रेया ऑन पुरानी जीन्स। तो गाने सुनकर के वापस आओ, फिर शुरू करते हैं आज की वार्तालाप। नहीं यार, वार्तालाप बड़ा पुराना वर्ड है, आज की गप्पे ये बड़ा मिलेनियल वर्ड है। तो शुरू क्या करें, बस आज की बातें आप और मैं मिलके।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने में भी और इस जमाने में भी बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स को नेकेड आइज से देखोगे तो इट्स वेरी हार्मफुल, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे पता है इस फिल्म को रिलीज किया था, क्योंकि 1980 में सोलर एक्लिप्स हुआ था एंड गवर्नमेंट वांटेड कि हर कोई अपने घर में बैठे। अब उसके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा साधन होता था दूरदर्शन, और इसीलिए इस फिल्म को सूर्य ग्रहण के दौरान रिलीज किया गया था ऑन दूरदर्शन। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ मैं बात कर रही हूँ आज मूवी चुपके चुपके की। ऋषिकेश मुखर्जी ने ये फिल्म बनाई थी, जया बच्चन अमिताभ बच्चन भी थे इस फिल्म में, और इस फिल्म को रिलीज किया गया था 1980 में, सो दैट जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है तो भाई लोग घर के बाहर ना निकले। तो उस जमाने की ऐसी कुछ सिंपल सिंपल यादें और बातें लेकर के इकट्ठा करके आती हूँ, यू कम राइट बैक, क्योंकि अगली बड़ी चटपटी सी बात है इसी फिल्म की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बच्चन साहब और जया बच्चन पीछे पड़ गईं कि उनको इस फिल्म में रोल चाहिए है। ऋषिकेश दा उनके पास नहीं गए थे, वो आए थे ऋषिकेश दा के पास। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। एंड उस जमाने में ना इंडस्ट्री में सिर्फ दो दादा होते थे, एक एस डी बर्मन साहब और दूसरे ऋषिकेश मुखर्जी। ऋषिकेश मुखर्जी जिनके लिए ह्यूज हाई रिगार्ड्स होल्ड करते थे दोनों बच्चन, अमिताभ बच्चन एंड जया बच्चन। सो व्हेन दे हर्ड कि ऋषिकेश दा एक फिल्म बना रहे हैं चुपके चुपके, वो दोनों उनके पास गए कि हमें तो रोल चाहिए दादा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कोई फिल्म बने और उसमें हम ना हो, जैसे कि अभिमान। वेल, तो दादा ने उनको एक बात समझाई, लेकिन दोनों इस बात पे अग्री ही नहीं किए। और फिर ना दोनों ने ये फिल्म कर भी ली, जबकि इन दोनों के बहुत ही छोटे छोटे रोल्स थे। क्या समझाया था मैं अभी आपको बताऊंगी कुछ गानों के उस पार। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारे टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड। दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

ऋषिकेश दा ने कहा कि ये रोल तुम दोनों के लिए बहुत छोटे हैं, यू आर टू बिग स्टार्स फॉर दिस रोल, लेकिन ये दोनों माने ही नहीं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ। वेल 1975 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा डायरेक्टेड। मूवी का नाम है चुपके चुपके। इस फिल्म में बहुत छोटा सा रोल किया है बच्चन साहब ने एंड जया बच्चन जी ने। सो ऋषिकेश दा को ये दोनों अपने फादर मानते थे और प्यार से उनको दादा कहते थे। सो जब इन दोनों को पता चला कि ऋषिकेश दा अभिमान के बाद ये फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है चुपके चुपके और इसमें इन दोनों को नहीं लिया है, वो दोनों पहुंच गए ऋषिकेश दा के घर और उनसे कहा कि दादा हम दोनों क्यों नहीं है इसमें। तो पता चला कि रोल बहुत छोटा है और वो न्यू फेसेस चाहते थे, जैसे कि धर्मेंद्र जी को चाहते थे। तो भाई बच्चन साहब ने कहा रोल चाहे जितना छोटा हो या फिर एक कैमियो ही क्यों ना हो, वी वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर फिल्म। फिर क्या, ऋषिकेश दा ने कहा ठीक है भाई आ जाओ। सोचो ये कितनी खूबसूरत बात है कि अमिताभ बच्चन, जया बच्चन किसी को इतना मानते थे कि उनकी फिल्म में छोटा सा रोल मिल जाए ये उनके लिए बहुत बड़ी बात होती थी। इसी फिल्म चुपके चुपके का एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

धर्म पाजी की जिद के आगे ऋषिकेश मुखर्जी की बिल्कुल नहीं चली। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मूवी का नाम है चिपके चिपके, डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी। सो धर्मेंद्र जी को इस फिल्म में लीड हीरो का रोल मिला और ऋषिकेश मुखर्जी आशा पारेख को चाहते थे उनके ऑपोजिट एज इन एज द लीड हीरोइन। लेकिन फिर धर्म पाजी ने सारी कसरतें कर डाली कि भाई आशा पारेख को रिप्लेस करके शर्मिला टैगोर को लाया जाए। धर्म पाजी को लगता था कि शर्मिला टैगोर ऑलरेडी एक हिट हीरोइन थी, बड़ी सारी पिक्चर्स जो हिट थी वो कर चुकी थी, फिर चाहे वो अमर प्रेम हो, अनुपमा हो, एन इवनिंग इन पैरिस हो, सो मेनी ऑफ देम। तो फिर उन्होंने ना काफी जद्दोजहद करके ऋषिकेश मुखर्जी को मना लिया। फाइनली ऋषिकेश दा ने भाई कहा चलो अपनी जिद पूरी करो, ले आओ शर्मिला को। एंड आशा पारेख जिनको वो अपना वर्ड दे चुके थे, आशा पारेख इस बात से काफी नाराज हुई और उस टाइम की फिल्म मैगजीन्स ने ये भी छापा था कि आशा पारेख ने आइरोनिकली धर्मेंद्र जी को ना इस बात का दोषी नहीं ठहराया, वो नाराज रही हमेशा के लिए ऋषिकेश मुखर्जी से। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म के सारे गप्पे मारेंगे मैं और आप मिलकर के। सो कम बैक राइट हियर, मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और ऑफ कोर्स इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आप श्रेया के साथ एक ऐसी मूवी जो उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे धमाल कर चुकी थी एंड पीपल लव्ड बिकॉज ऋषिकेश दा की ना जितनी भी फिल्में होती थी उनके सिंपल प्लॉट होते थे और घरेलू जिंदगी से हमेशा रिलेट करती थी. सो इस फिल्म में थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, धर्म पाजी, शर्मिला टैगोर. एंड इसी फिल्म का एक बड़ा प्यारा सा गाना है, सुनाती हूँ आपको समथिंग वेरी यूनिक अबाउट दिस सॉन्ग. सो ये गाना किशोरदा और रफी साहब ने एक साथ गाया, सुनना. अब हुआ ये कि इस गाने का एक स्टैंजा तो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, दोनों एक साथ गा रहे थे, बट अगले स्टैंजा के लिए ना ये हुआ कि भाई आराम से गाएंगे इसको. और उस आराम से में ही रफी साहब को देश के बाहर जाना पड़ गया. अब क्या होता, क्योंकि गाना तो दोनों एक साथ गा रहे थे, फिर क्या किशोरदा मैदान में उतरे और जो अगला स्टैंजा है वो जब आप सुनोगे ना तो किशोरदा ने सोलो ही गा करके खत्म कर दिया, निपटा दिया. यही गाना कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स. दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक ही साल में इंडियन ऑडियंस ने इन दोनों के दो रूप देखे. 1975, द ईयर दैट एक्चुअली वाज मैग्निफिसेंट इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा. एक तरफ इन दोनों की मूवी शोले रिलीज हुई और दूसरी तरफ इनकी फिल्म रिलीज हुई कॉमेडी वाली चुपके चुपके. शोले जिसमें एक्शन ही एक्शन था, दूसरी तरफ चुपके जिसमें कॉमेडी ही कॉमेडी थी. और मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन एंड धर्मपाल जी की. ये इन दोनों की पहली फिल्म थी चुपके चुपके, जिसने पूरी तरीके से कॉमेडी से इन दोनों कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था. एंड इट इज सेट कि धर्मपाल जी एंड अमिताभ बच्चन को इतना मजा आता था. दो इन दोनों के सीन्स बहुत कम हैं एक साथ, बट दे हैड द टाइम ऑफ देयर लाइव्स व्हाइल शूटिंग फॉर दिस फिल्म. वैसे ये बात तो ऋषिकेश मुखर्जी की हर फिल्म के लिए कही जाती है. सिर्फ उनके ही नहीं, यश चोपड़ा साहब की भी हर फिल्म के लिए कहा जाता था कि उनकी फिल्म के सेट्स सेट्स नहीं होते थे, फैमिली पिकनिक हुआ करती थी. पुरानी जीन्स पे चुपके चुपके की ही बातें चलती रहेंगी विद मी श्रेया. सो बस कहीं भी मत जाना, कम राइट बैक.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: माय
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: Trolley number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldie?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: अच्छा सुनो, तुमको बच्चन साहब का घर जलसा, घर नहीं बंगलो जलसा अंदर से देखना है क्या? तो फिर चलो मैं लेके चलती हूँ पुरानी जीन्स पे. हेलो हेलो, वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और ये फिल्म है चुपके चुपके, ऋषिकेश दा ने बनाई है और इसमें जया जी हैं, अमिताभ बच्चन हैं, धर्मेंद्र हैं, शर्मिला टैगोर हैं. मेन लीड में तो धर्मपा जी और शर्मिला जी थी और छोटे से रोल में थे अमिताभ बच्चन एंड ऑफ कोर्स जया बच्चन. ओके, सो अगर आपको उनका घर, उनका बंगलो देखना है ना, तो आपको इस फिल्म का ये गाना देखना पड़ेगा, चुपके चुपके चल रही पुरवैया. एक्चुअली इस गाने के जितने भी शॉट लिए गए हैं ना, ये इसी बंगलो के अंदर लिए गए हैं. तब ये बच्चन साहब का बंगलो नहीं था, इसका नाम जलसा नहीं था, ये था एनसी सिप्पी साहब, डायरेक्टर प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी साहब का घर. तो ऋषिकेश मुखर्जी ने ना कुछ दिनों के लिए ये गाना शूट करने के लिए उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया था. सो इफ यू रियली वांट टू सी कि उस टाइम पे जलसा कैसा लगता था, ये वाला गाना देख लेना. मुझे तो बड़ा मजा आया देख करके. एक बड़ा सा टेरिस दिखाया है, उसमें बड़ा सा झूला है, खूब सारा ओपन ग्राउंड है आसपास. सो या गो एंड वॉच दिस पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ. एनसी सिप्पी साहब ने ये बंगलो दिया कब, क्यों और कैसे बच्चन साहब को, अभी बताऊंगी ये कहानी. कम राइट बैक.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस गाने की शूटिंग के दौरान ही मुझे लगता है कि बच्चन साहब ने सोच लिया था कि ये घर तो वो खरीद के रहेंगे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आपको जलसा, यस, उनका बंगलो अंदर से देखना है तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ, ये वाला गाना देखना पड़ेगा। चुपके चुपके चल रही पुरवैया, ये जलसा के अंदर शूट हुआ है। अब पूरी कहानी बताती हूँ इस गाने की, इनफैक्ट जलसा की। सो होता ये है कि ये पूरा बंगलो जो है वो NCCP साहब का होता था, तब इसका नाम ना जलसा नहीं होता था। तो ये गाना जब शूट किया गया उसके बाद ना तभी सोच लिया था बच्चन साहब ने कि भाई वो ये बंगलो लेकर के रहेंगे। अब हुआ ये कि इसी दौरान NCCP साहब के बेटे की किडनैपिंग हो जाती है एंड तब से उनको लगता है कि भाई घर बहुत बड़ा है, बंगलो बहुत बड़ा है, ही कुडंट टेक केयर एंड घर में लोग बहुत कम है, वो हमेशा से ये घर छोड़ना चाहते थे। इसी टाइम के दौरान उन्होंने फिल्म बनाई सत्ते पे सत्ता जो कि ह्यूज हिट रही। हाँ, सो बच्चन साहब ने कहा कि ठीक है एक काम करते हैं, आपको ये घर बंगलो वैसे ही नहीं पसंद है और मेरी फीस बहुत ज़्यादा है, सत्ते पे सत्ता हिट भी हो गई है, तो एक काम करिए आप मुझे बंगलो दे दीजिए और जो बाकी का पैसा बचेगा मेरी फीस का वो दे देना मुझे। NCCP साहब को ठीक भी लगा, उन्होंने ये बंगलो एज फीस सत्ते पे सत्ता के हिट होने के बाद बच्चन साहब को दे दी। यही बंगलो आज जलसा के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे हर संडे बाहर आते हैं और अपने फैंस से मिलते हैं, हाथ वेव करते हैं, ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन जी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, ऐसी बहुत सारी गप्पे होती है मेरे पास, तो बस वापस आओ।

ऋषिकेश दा का ना बिल्कुल अलग तरीका होता था अपने एक्टर्स को रिपोर्टिंग लेट के लिए पनिश करने का। पुरानी जीन्स में आप और श्रेया के साथ आज बात हो रही है फिल्म चुपके चुपके की, जिसमें थे धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया जी एंड अमिताभ बच्चन। सो धर्मपाजी ना हमेशा लेट होते थे सेट पे, तो पता है क्लाइमैक्स अगर तुम इस फिल्म का देखोगे तो उसमें दिखाते हैं कि धर्मेंद्र जी एक वॉशरूम से निकल रहे हैं एंड ही इज एडजस्टिंग हिज पैंट्स, वो अपनी पैंट्स को ठीक कर रहे हैं। अब ये सीन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ऋषिकेश दा क्रिएटिवली पनिश करना चाहते थे धर्मेंद्र जी को फॉर ऑलवेज कमिंग लेट ऑन द सेट। अब धर्मेंद्र जी जो हमेशा अपनी मैचो इमेज के लिए, गुड लुकिंग फीचर्स के लिए नोन थे, ही वॉज पॉपुलर एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी कॉन्शियस कि वो हमेशा अच्छे दिखे, सोफेस्टिकेटेड दिखे, वाइट शर्ट में दिखे, उनको वही अपने डायरेक्टर की बात माननी पड़ी। ये उनके लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट था कि वो अपनी पैंट को ठीक ठाक करते हुए बाथरूम से निकल रहे, ये शूट लिया जाए। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम बैक राइट हियर।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

उस टाइम पे ना हर डायरेक्टर का एक फोटे होता था, जैसे कि यश चोपड़ा साहब जो थे ना वो फॉरेन लोकेशंस दिखाते थे, जैसे गुरुदत्त साहब जनरली डार्कर साइड ऑफ लाइफ दिखाते थे, जैसे कि ऋषिकेश मुखर्जी उनकी फिल्मों में तो हमेशा आम आदमी होता था और वो कोशिश करते थे कि क्लाइमैक्स तक आते आते वो अपने ऑडियंस को ना कुछ लाइफ गिविंग लेसन दें। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। सो उस टाइम पे पता है क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंग्लिश का एडवेंट हो रहा था एंड इंग्लिश कॉमनर्स के पास भी पहुंच रही थी। बट इस फिल्म में जब धर्मपाल जी को दिखाया है कि धर्मेंद्र बोटैनिकल प्रोफेसर हैं, उनकी साइंस एकदम अव्वल दर्जे की है लेकिन इंग्लिश टूटी फूटी है, और एंड में दिखाते हैं कि भाई चाहे लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो अगर आपको नॉलेज है तो यू आर द बेस्ट। सो इसीलिए ना ये फिल्म बहुत ही प्यारी है, बहुत हल्के फुल्के जोक्स हैं, आप बहुत रिलेट करोगे इससे। अगर आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखो, और अगर देख लिए तो बार बार देखो। मूवी का नाम चुपके चुपके। पुरानी जीन्स पे ये किसका नाम है? मेरा यानी आपकी प्यारी श्रेया का नाम। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक एंड ऑन इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHREYA with love।

0: देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: साथ जीतू राज।
1: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स, फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
4: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों पे है जिन्हें एक ही बंदे पे बार बार प्यार आता है। उनके सामने कितनी भी हसीनाएं आ जाए या फिर कितने भी हैंडसम मुंडे आ जाए, उन्हें तो प्यार बस इसी एक बंदे पे बार बार आता है। अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास जी की आवाज में कौन सा गाना है आप गौर फरमाइए। तब तक मैं जाती हूँ, ख्याल रखो अपना। इन केस यू वांट टू स्पीक विद मी तो वन टू वन चैट हो जाएगी ना हमारी फेसबुक या इंस्टा पे, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे एस एच आर यू वाई ए श्रेया विद लव। बस डीएम कर देना। गुड नाइट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
2: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में

0: जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को फाइनली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन, विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: Saad Jeetu Raj, only on Mirchi, it's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम के तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जो अलग बिहेव करे क्या जरूरी है कि उसके पीछे वैल्यूज भी हो, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, मेरा एक दोस्त है, वो लिव इन रिलेशनशिप में था और उसका ब्रेकअप इस वजह से हुआ क्योंकि उसके टॉयलेट्स को लेके ना बहुत बहुत सख्त नियम थे। तो मेरा दोस्त है, उसके नियम है कि भैया अगर आप मेरे घर आते हो तो आपको सबसे पहले, चाहे आप काम से आए हैं, बाजार से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, पहले आपको शावर लेना पड़ेगा। वो अपने गर्लफ्रेंड पे भी ये नियम, कोमोड जो है एकदम बिल्कुल सूखा होना चाहिए, तौलिया जो है अपनी जगह पे होना चाहिए, ये फिल्मों में आमतौर पर हम देखते थे, इसने एक्चुअली उसको अपने घर पे लागू किया। रिश्ता जब टूटने की कगार पे था तो हम सब ने उसे मिलकर कहा, भैया ये तुम बहुत अजीबो गरीब हरकत कर रहे हो, ये इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसने अपने रिश्ते को बचाने के बजाय अपने टॉयलेट के हैबिट्स को के साथ रहना ज्यादा जरूरी समझा। और जब हमने पता करने की कोशिश की, बातचीत हुई, तो ये पता चला कि जब वो बड़ा हो रहा था ना तो उसके परिवार में बहुत सख्त तरह से फॉलो होता था, तो कहीं ना कहीं ये इसके दिमाग में ड्रिल इसके फैमिली ने कर दिया था। मेरा आपसे जो सवाल है कि वैल्यूज और एक्सेंट्रिसिटीज में ये जो फर्क करना है, ये हम कैसे समझें और कब समझें कि यहाँ रिश्ता ही टूट रहा है लेकिन वो इसी जिद में खड़ा हुआ है।
4: जो भी वैल्यूज होते हैं वो हमारे अपने लिए होने चाहिए। प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशंस वो तब क्रिएट करते हैं कि जो मुझे अपने लिए ठीक लगता है वो सब करने चाहिए। वहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि फिर आप कंट्रोलिंग नेचर के हो जाते हैं। आप अगर कंट्रोलिंग नेचर के होंगे तो जो भी है आपके नजदीक वो सफोकेटेड फील करता है।
3: तो आप कह रहे हैं वैल्यूज जो है वो खुद के लिए होने चाहिए।
4: पहले तो ये एक वैल्यू सिस्टम भी अलग होता है, विच इज मोर डीपर। यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन है, आप सच बोलते हैं, उसको ये एक तरीका होता है जीवन जीने का।
3: बिल्कुल,
4: ये थोड़ा सा जिसको हम कहेंगे हैबिट्स, आदतें हैं हमारी,
3: आदतें हैं।
4: वैल्यूज अलग हो जाती हैं, डीपर होती हैं। उसके ऊपर चर्चा करना फिर भी जरूरी होता है क्योंकि वैल्यू सिस्टम में कई बार कॉम्प्रोमाइज नहीं भी होता। हम ये नहीं कहते कि अच्छा ठीक है मैं सच बोलूंगा, तुम झूठ बोलते हो तो बोलते रहो।
3: बिल्कुल,
4: वहाँ पर तो नहीं होगा। जो एथिक्स है, मोरालिटी है, कई बार हर बार सब्जेक्टिव नहीं होती, कई बार वो जरूरी होती है। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं और टॉप लेयर की आदतें, आपकी अपब्रिंगिंग इस प्रकार से थी इसलिए ये आपकी आदत है, वो तो अलग ही होंगे। आप किसी तरह से जीवन जीते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को कंट्रोल करेंगे वो सफोकेट होगा तो वो रिश्ते के अंदर दरार तो लेकर आएगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: लाइफ में बैलेंस क्यों सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन कई बार क्या होता है कि क्योंकि आप जब बड़े हो रहे होते हैं, किसी किसी फैमिलीज में कुछ कुछ ट्रेडिशंस, रिचुअल्स, आदतें, हैबिट्स, जिस तरह के आपने कहा, वो इतनी गहरी होती है, वो उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, और आप में इतने गहराई से वो बैठ जाता है कि आपको लगता है यही जीवन जीने का तरीका है और यही सही रास्ता है, तो उसको बदलना बहुत कठिन होता है। तो हाउ डू यू डील विद दैट?
4: कठिन है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: पहली चीज, आप बदलना चाहते हैं कि नहीं, दैट इज वन। कई बार मुझे कंफर्टेबल है, दूसरे को नहीं है।
3: नहीं,
4: इफ आई एम कंफर्टेबल एंड अदर पर्सन इज कंफर्टेबल कि मैं कर रहा हूँ, पर उसके ऊपर वो प्रेशर नहीं है करने का, तो हम उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है, मुझे कंफर्टेबल है लेकिन दूसरे व्यक्ति को उससे तकलीफ है, तो भी अपने को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जब आप रिश्ते में हैं तो आपको कहीं तो बैलेंस के साथ तो चलना पड़ेगा ना।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हैबिट और वैल्यू में अंतर क्या है और दोनों का रोल लाइफ में कैसे अलग होता है, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ।

0: यही करना पड़ेगा। तो उस समय हम हैबिट और वैल्यू में फर्क समझ नहीं पाते। तो अब उस इंसान को, अब बड़ा हो गया, 25 या 35 साल की उम्र की बात है, तो उसको लगता है यही सही तरीका है, अगर ये नहीं करेंगे तो इंसान ही गंदा है, इंसान ही बेकार है।
1: में हम कंटिन्यूसली सीख रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और बदल रहे हैं, और वही जीवन है। अगर आप नहीं बदलते, आप समय के साथ चेंज नहीं होते, आप रिश्तों को समझ करके एडजस्ट नहीं करते, प्यार में कहते हैं ना थोड़ा बहुत त्याग करना, वो आपको मुश्किल नहीं लगता, उसमें मेहनत नहीं लगती, बिकॉज देयर आर फ्यू थिंग्स यू विल डू क्योंकि उसमें उनका कंफर्ट है, पर आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हैं, तो आपको वो चीज मुश्किल नहीं लगती। वो इसलिए कहते हैं कि प्यार में बलिहार जाना मुश्किल नहीं लगता, वारी जाना मुश्किल नहीं लगता। अब आप अगर रिजिड बने रहेंगे, दैट इज नॉट लाइफ। ऑल आई एम सेइंग इज क्या बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इसमें मेरा क्या फायदा है, उसमें सामने वाले का क्या फायदा है। अगर उसमें कुछ फायदा है तो जरूरी नहीं है जो मैं कल था मुझे वो आज ही होना है। जरूरी तो ये कि मुझे आज और बेहतर बनना है, जिसमें मेरा भी ग्रोथ हो और सामने वाले को भी कंफर्टेबल हो।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: दूसरों से पहले खुद के साथ रिश्ता बेहतर कीजिए, कैसे आइए जानते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: तो अब बात आती है जिस चीज से मैं वाकिफ रहा हूँ, सारे जीवन पला बड़ा हूँ उस एनवायरनमेंट में, वो जो हैबिट्स जिनको मैं वैल्यूज समझ बैठा था उनको चेंज करने का। लेकिन कई बार इन वैल्यूज के खिलाफ जाना, इन नॉर्म्स के खिलाफ जाने में बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि सामने मेरा पूरा परिवार खड़ा है जिनको लगता है कि यही जीवन है भैया, अगर तुम इसका पालन कर सकते हो तो तुम करो, नहीं तो कोई बात नहीं, इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। तो वो सम्मान की वजह से आदमी पीछे रह जाता है, चुप रह जाता है, या आपको लगता है साहस की कमी है उस वजह से कम रह जाता है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक इंसान को लगता है कि ये गलत हो रहा है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरी जीवन शैली अलग हो गई, अब मुझे कुछ तो इसके बारे में बोलना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा भाई ये जीवन ऐसे नहीं चलता।
5: अगर आपको गलत लग रहा है, सी ये चीज हम कई बार बार बार कहते हैं, वो करना होता है जो सही है, चाहे वो परिवार हो चाहे वो समाज हो, पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो सही है। अगर आपको लगता है कि सही है तो करना है, उसमें अगर कोई नाराज भी होता है, कोई अपसेट भी होता है, वो ठीक हो जाएगा। आप बात करें, कम्युनिकेट करें, उनको एक्सप्लेन करें, लेकिन अगर आप नहीं वो करते और गलत करते जाएंगे तो बाहर रिश्ता बना रहेगा पर अपने से रिश्ता टूट जाएगा ना।
4: सही बात,
5: हम सफोकेट होते जाते हैं। सी बाहर रिश्ता बनाने के लिए भी अपने साथ कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी होता है
4: पहले। हाँ, खुद से रिश्ता बनाए तो बाहर बनेगा।
5: आप अपने साथ तभी कंफर्टेबल होते हैं जब आपको कंफर्टेबल फील होता है कि नहीं, ये मुझे सही लगता है और मैं सही पर चल रहा हूँ। यू स्लीप वेल, यू लिव वेल, यू वेरी वेरी कम्फर्टेबल विद योर सेल्फ, फिर हमारे अंदर उतनी हिम्मत आती है, हमारी आवाज में उतनी अथॉरिटी और अनुभूति होती है कि हम सामने वाले को कन्विंस कर पाते हैं या एक्सप्लेन कर पाते हैं कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है। सो इट इज ऑलवेज फर्स्ट हैविंग अ रिलेशनशिप विद योर सेल्फ देन विद अदर्स।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Family values हमारी thinking और decisions को कैसे shape करती हैं? आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आपसे मैं अब एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल पूछने जा रहा हूँ, शायद आपको लगे। कई बार मैंने देखा बहुत सारे परिवारों में जो फैमिली वैल्यूज के नाम पर बात आगे बढ़ाई जाती है, वो एक कन्वीनियंट सिस्टम होता है जो उन्होंने बहुत सालों तक फॉलो किया है। सालों तो क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो किया है। जो उन्हें मिला वो उसको आगे बढ़ाते गए। अब कहीं ना कहीं लॉजिक उसमें से गायब हो गया। ये क्यों करते आए उनको नहीं पता, लेकिन अब आपको फॉलो करना है क्योंकि हमारे परिवार में यही फॉलो होता है। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या ये फैमिली वैल्यूज जो हैं वो डर की वजह से चलाए जा रहे हैं, या इनमें कोई एक्चुअली कारण है, या सिर्फ ताकि लोग भय में इनको फॉलो करें इसी वजह से किया जा रहा है? बहुत सारे फैमिलीज में ऐसा देखने को मिलता है।
4: कुछ भी भय में तो करना नहीं चाहिए। हम भय में कोई चीज क्यों करें? लेकिन अगर कोई ट्रेडिशन है, आपके परिवार में कोई भी ट्रेडिशन है, आप अगर उसको फॉलो करना चाहते हैं तो समझ लीजिए। सिंपल ये भी एक ट्रेडिशन हो सकता है कि जैसे पहले होते थे, छोटे हैं घर के, अगर बड़े हैं तो उनके पांव छूते थे। आज के बच्चे कहेंगे हम क्यों पांव छुए? या पहले ऐसा होता था कि अगर यंग लेडी है तो वो छू रही है, सबके पांव छू रही है, अब हम क्यों छू रहे हैं? एक सिंपल यही बात करें, छूना नहीं छूना वो अलग बात है, आप ट्रेडिशन फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये भी जरूरी नहीं है कि उस ट्रेडिशन से ही आप किसी को रिस्पेक्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम सबके पांव छूते हैं, पर जरूरी नहीं है हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट,
3: कोई रिस्पेक्ट हो, बिल्कुल।
4: और ये भी हो सकता है
3: कि नहीं छूते, हम नहीं लेकिन करते, बहुत रिस्पेक्ट है,
4: पर हमारे दिल में मन में उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट है। पर वो एक रिस्पेक्ट का साइन था कि छोटे पांव छूते थे और बड़े उनको आशीर्वाद देते थे। तो ये ह्यूमिलिटी का साइन था। हम पैर छू रहे थे, क्या है? ह्यूमिलिटी का साइन है, बाव डाउन करना। और आशीर्वाद देना माना उनके अंदर में शुभ भावना होती थी कि आप जो छोटे हैं वो सदा आगे बढ़ें, सफल हों, आपके जीवन में खुशी हो। अब दोनों तरह से वो भी आशीर्वाद दे करके कुछ बोल सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो आशीर्वाद भी दिल से है। तो पहली चीज ये है कि फॉलो करे ना करे, दिल से वो चीज होनी चाहिए, दिल से रिस्पेक्ट है और दिल से आशीर्वाद है। और दूसरा है कि अगर हम वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं समझ करके, उसमें कोई हर्जा नहीं है। यहाँ तक कि मुझे तो कई बार ये भी लगता है कि अगर उस ट्रेडिशन को फॉलो करने में किसी को थोड़ी सी खुशी मिलती है
3: तो क्या प्रॉब्लम है।
4: मैंने आपने उस ट्रेडिशन को समझा कि ये ह्यूमिलिटी का साइन है, आपने ये भी समझा कि इसमें बड़ों की दुआएं मिलती हैं, आपने ये भी समझा कि दुआएं हमें जीवन में बहुत आगे बढ़ाती हैं, असंभव को संभव करती हैं। आप समझ करके अगर वो कर्म करते हैं, और उसको करने में कितनी देर लगती है? 2 सेकंड।
3: बिल्कुल।
4: तो अगर 2 सेकंड के उस कर्म को हमने समझ करके किया, उसमें हमारा बेनिफिट है और किसी को उससे खुशी मिलती है, तो क्यों हम उसको इतना बड़ा इश्यू बना दें?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हर हैबिट के पीछे एक लॉजिक होता है, उसे समझना क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, आप सही कह रहे हैं कि अगर करने से किसी को खुशी मिलती है, करने में क्या दिक्कत है। कभी कभी कुछ ऐसे करने को कहा जाता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ कि दाहिने पैर ही अंदर रखा करो, तुमने बायां पैर पहले घर में क्यों रखा। अब ये अगर मैं लेफ्टी हूँ तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं दिया जाता। कभी भी खाना अगर हो, राइट हैंड से खाना, लेफ्ट हैंड से नहीं खाना। और अगर आपने लेफ्ट हैंड में डाल के या अगर किसी खाने लेट से प्लेट में खाना परोसा हुआ है, ऐसे लेके नहीं खाना, वो झूठा हो जाता पूरा प्लेट। और वहीं मैं देखता हूँ कि घर के बड़े बुजुर्ग ऐसे लेके दूसरे हाथ में डाल के खा रहे हैं, तब वो झूठा नहीं होता। तो कभी कभी जो लॉजिक पे चलने वाला इंसान है, और अक्सर जब हम बड़े होते हैं सवाल करने की प्रक्रिया जारी होती है, हॉर्मोन्स हम पे हावी होते हैं, तो हम लॉजिक ढूंढ रहे होते हैं। तो उस समय आपको लगता है कि जितनी भी चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं इनमें लॉजिक कुछ नहीं, हमें सिर्फ इसलिए फॉलो करने बोला जा रहा है क्योंकि हम घर में छोटे हैं और बड़ों को इसका लॉजिक नहीं पता, वो भी अंधविश्वास में फॉलो कर रहे हैं।
4: नहीं, लॉजिक तो फाइंड आउट करना चाहिए। मुझे ऐसा कई बार लगता है कि हमारे बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर लॉजिक होता है। ऐसा नहीं है, उसकी जब शुरुआत होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है, और वो सिग्निफिकेंस भी हमारे भले के लिए ही होता है। आपस में कॉन्फ्लिक्ट करने की जगह लॉजिक ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सच बात है कि जब तक कोई चीज समझ में नहीं आती क्यों करनी
3: है, तब तक आदमी करता नहीं मन से,
4: बहुत मुश्किल लगती है वो चीज करना। चाहे वो मंदिर जाकर भगवान को याद करना ही है, या कोई दिया जलाना ही है, या वो राइट लेफ्ट हैंड की बात है, लेकिन जब वो समझ में आ जाता है तो वो हमारे को करना इजी हो जाता है। नाउ वी हैव मूव्ड फॉरवर्ड,
3: मूव्ड अहेड, एब्सोल्युटली,
4: एंड नाउ उस चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो करने की भी आवश्यकता नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एडजस्टमेंट कब स्ट्रेंथ होती है और कब सेल्फ लॉस, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मेरी मामी बहुत प्यारी बात कहती है कि कोई भी रिश्ता ना बना बनाए नहीं आता, और प्यार ना ये लव एट फर्स्ट साइट कुछ नहीं होता। वो कहती है कि प्यार जो है वो पनपता है, को एग्जिस्टेंस है। जब साथ में आप रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, झगड़े होते हैं उनको आप पार करते हैं, तो आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो बहुत समय लगता है। तो मेरा ऑटोमेटिकली सवाल था कि भाई जब एक नया बंदा आता है आपके फैमिली में, एक नया रिश्ता कायम करता है, तो फिर उसके लिए तो ये सब बिल्कुल नया होता है, क्योंकि आपको ये सब देखना पड़ेगा, को एग्जिस्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी आपको बहुत लंबी जर्नी में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए तो ये जो एडजस्टमेंट है या कॉम्प्रोमाइज है या जो भी है, ये करने में थोड़ा समय लगेगा। तो एक नए बंदे के लिए इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, अगर आप पेशेंट नहीं है तो।
4: नहीं, ऐसा नहीं है। सी, मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाट इट इज। कई बार जर्नी बहुत इजी होती है, पर आपको जर्नी का पता ही नहीं होता ना ये कैसी। अगर आपको पहले से पता होता है कि दो जने हैं और डिफरेंट होंगे और हमें एक्सेप्ट करना है, कहीं फॉरगिव करना है, कहीं लेट गो करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, आपको पता होता है, क्लैरिटी होती है कि ये करना है, तो वो इतना मुश्किल नहीं होता। पर इन मोस्ट केसेस में आपको पता ही नहीं होता, आप उल्टा चल रहे होते हो,
3: कोई बताता भी नहीं है ना।
4: तो इसलिए तो हम कई बार कहते हैं ना, आईक्यू बहुत है, इंटेलिजेंट है, मॉडर्न एजुकेशन है। ये वाली जो एजुकेशन है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, ये आती है आध्यात्मिकता से। एक आधुनिक पढ़ाई है, आध्यात्मिक पढ़ाई है। आध्यात्मिक पढ़ाई में क्या होता है, आप खुद को समझते हो। एक बार आपने अपने को समझ लिया, आप सबको समझ जाते हो। वी नॉट वेरी डिफरेंट। जो बात मुझे दुख देती है वो बात आपको भी दुख देगी। जो बात मुझे परेशान करती है वो आपको भी परेशान करेगी। फिर मुझे पता है कि मुझे इस समय पर क्या चाहिए। मैं दर्द में हूँ तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई चाहिए जो मेरे से प्यार से बात करे, एम्पावर करे, एक्सेप्ट करे। तो जब आप दर्द में है तो मुझे समझ में आ जाता है, उस समय मुझे आपका दर्द दिखाई देता है, एंड आई नो हाउ टू हील यू। बट वी डोंट स्पेंड टाइम टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, एंड दैट इज वाई दे आर मिसअंडरस्टैंडिंग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिस्टम को बदलने के लिए उसका हिस्सा बनना क्यों जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: पेज 3 फिल्म आई थी, उसमें बहुत खूबसूरत लाइन है, कोंकणा सेन शर्मा ना परेशान होकर छोड़ देती है, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही होती है, तो उसमें अतुल कुलकर्णी एक जो रोल प्ले करते हैं वो उसे कहते हैं कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा, सिस्टम के अंदर रह के आप सिस्टम को चेंज कर सकते हो, अगर आप सिस्टम के बाहर आ गए तो आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकती। और कहीं ना कहीं आप भी वही बात कह रही हैं कि आप जब तक उस सफर से गुजरेंगे नहीं, जब तक आप वो, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली क्या है ये रिश्ता। सो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम टू चेंज इट।
4: हम किनारा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो इजियर ऑप्शन है, पर हम किनारा किससे कर रहे होते हैं कि हम हर्ट नहीं हो, हम उससे किनारा कर रहे होते हैं। लगता है हम व्यक्ति से किनारा कर

0: हाँ लेकिन
1: पर हम किनारा किससे कर रहे होते हैं? आई डोंट वॉन्ट टू गेट हर्ट अगेन,
0: राइट?
1: सो आई एम ट्राइंग टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ बाई ब्लॉकिंग एवरीबडी इन माई लाइफ. दूर रहेंगे तो सेफ रहेंगे, दूर रहेंगे तो प्रोटेक्टेड रहेंगे. बट अगेन रिश्तों में अगर एडजस्टमेंट है तो उसमें और भी तो बहुत कुछ है ना. सपोर्ट भी है,
0: बिल्कुल है, लव है, केयर है, शेल्टर है, बहुत कुछ है,
1: सिक्योरिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टेंस है, बहुत कुछ है, और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट भी है.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसे जाए अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कम ऑन बेबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लोग

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो लाइफ ना एक समोसे की तरह होती है, बाहर से क्रिस्पी होती है और अंदर से एक्स्ट्रा मंडे का तीखा तड़का लगाकर थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाती है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कॉफी से पहले गर्मा गर्म बातें होती है और वो बातें ना थेरेपी का काम करती है। अच्छा ये सुनो, नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ एक्साइटिंग होने वाला है, 9 nights, ढेर सारा लक और ढेर सारी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज, ये सब के बारे में थोड़ी सी देर में बताऊंगी। अभी तो शो शुरू ही हुआ है, मुझे फॉलो कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आज भी एक कॉन्टेस्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। उसके लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन, मिर्चीदार गाने वाने सुनो, मुझे जाकर फॉलो करो, मुझसे बातें करो और मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज की डेट में हिस्ट्री में क्या हुआ था पता करने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले 539 BC में पर्शियन किंग साइरस द ग्रेट की आर्मी ने बेबीलोन कैप्चर किया था। एंड 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस की एक्सपेडिशन कैरेबियन पहुंची। हिस्ट्री का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज लेट्स जस्ट से द नेटिव अमेरिकन्स वरंट एग्जैक्टली वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। फास्ट फॉरवर्ड टू 1964, सोवियत यूनियन ने वॉस्कॉट 1 लॉन्च किया, स्पेस में पहली मल्टी पर्सन क्रू गई थी। 1967 में इंडिया ने अपना सोशलिस्ट लीडर और फ्रीडम फाइटर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को खो दिया था। एंड द ईयर 2000 में यूएसएस कोल पर येमेन के एडन पोर्ट में टेररिस्ट अटैक हुआ, किलिंग 17 अमेरिकन सेलर्स। 2002 में बाली बॉम्बिंग्स किल्ड 202 पीपल, एंड वी रिमेम्बर द विक्टिम्स फॉर दीज ट्रेजिक अटैक्स। फाइनली 2007 में अल गोर और यूएन क्लाइमेट पैनल को नोबेल पीस प्राइज मिला। प्लैनेट को बचाने की बात तो खैर अब भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, मुझे सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स पर, एंड इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। ड्रॉप मी अ हाय देयर एंड राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारे टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज, Only on Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अभी फिलहाल टेम्परेचर है 54 डिग्री फारेनहाइट, हल्की सी बारिश और नॉर्थ विंड से 9 माइल्स पर आवर की हवा चल रही है। मतलब कि बाहर निकलोगे तो मौसम कहेगा ठंड का है ये तुमको इंतजार में हूँ ना, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुबह के स्काई जो है वो थोड़े से क्लाउडी रहने वाले हैं, फिर 10 से लेकर 2 बजे के बीच में सनशाइन की एंट्री होने वाली है एकदम कैमियो की तरह, फिर 10 से लेकर 2 के बीच में सनशाइन की एंट्री होगी उस हीरो की तरह जिसका कैमियो होता है एकदम स्लो मोशन में। आफ्टरनून में हाई जाएगा 73 से लेकर 74 डिग्री फारेनहाइट के बीच में, तो लेयर के प्लेयर बनकर निकलना आज जरूरी है, बिकॉज आज जो है न्यू जर्सी का वेदर वो देसी रिश्तेदार की तरह है, कभी भी मूड चेंज कर सकता है। रात को स्काईज मोस्टली क्लियर रहने वाले हैं विद टेम्परेचर्स ड्रॉपिंग टू अराउंड 54 डिग्री फारेनहाइट, लेकिन गुड न्यूज ये है कि पिछले 24 घंटों में 37 मिलीमीटर की

midnight and today it's going to be noticeably warmer. तो बाहर निकलोगे SPF 50 plus plus plus लगाकर ही जाना. Keep yourself hydrated, have plenty of water. मिर्ची का वाइब बना कर रखो अपने साथ में. I've got a contest for you today, जिसको थोड़ी सी देर बाद लेकर आऊंगी मैं. अभी फिलहाल तुम जाओ मेरा सोशल मीडिया हैंडल चेकआउट करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम MIRCHIPRIS इंस्टाग्राम और एक्स पर एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. ड्राइव सेफ करते रहो और मुझे अपने साथ बनाए रखो. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: SG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब तीन अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ज़ोरान ममदानी और एनवाईपीडी कमिश्नर जेसिका टिश के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2026 के फर्स्ट 9 मंथ्स में मेजर क्राइम 6.6% डाउन हुआ है अक्रॉस ऑल 5 बरोज। दैट्स ओवर 6,000 फ्यूअर रिपोर्टेड मेजर क्राइम्स कंपेयर्ड टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और सबसे सिग्निफिकेंट मर्डर्स, शूटिंग इंसिडेंट एंड शूटिंग विक्टिम्स, तीनों के नंबर्स जनवरी से सितंबर तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे लो रहे हैं। द ब्रॉन्क्स सॉ द biggest drop in major crime down by nearly 12% and public housing maybe shootings and robberies declined. Number two, Russia and Ukraine ka ceasefire. Donald Trump says dono countries agreed to stop attacking each other's energy infrastructure. Lekin hold on, Ukraine's President Zelensky said the announcement was news to him and attacks were still being reported. To agreement hai, announcement hai, ya phir ground reality hai? Ye abhi still developing story hai. And lastly, sports say India's Abhishek Sharma just smashed the T20 international record, reaching 2,000 runs in just 1,024 balls. Beating Surya Kumar Yadav, aka Sky's record. And that's your Mirchi Hour ke 3. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Follow karo Mirchi Pris on Instagram and X. That is MIRCHIPRIS. And drop me a message on WhatsApp 90336472444. Stay tuned and stay hot.

0: ए सांबा जिंदगी की बरसात है आज रात है टाइम पास है
1: हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप लैब?
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना वो देखते होंगे डॉक्टर क्या
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा इस तरह।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल आप 9 ड्रॉप मान लो 9 करते हो आप 2 कह रहे हो मैं तो 9 पकड़ के चल रहा
1: हूं। 2 4 9 का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप 3 ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
1: टाइम खराब कर रहे हैं मेरा भी।
2: ये तो ये हो गया ना इंसान को लूटने वाली बात हो गई। मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: नहीं तो मेरा यूरिन
1: कहीं और दे देता फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता। मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई। जाकर
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे
2: ठीक है मैं निकलवा लूंगा और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा उसको संभाल के रखना फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट जहां पे भी जाना है
2: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसे।
1: हाँ ठीक है देख ले
2: भाई।
1: हाँ ठीक है
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल।
4: मोहब्बत के हर रंग का एहसास ये प्रेम मोल लिया।

0: इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग। जो नवरात्रि में माता का आशीर्वाद तो चाहिए ही चाहिए, बट व्हाट इफ तुम्हारे ऊपर लक का थोड़ा सा आशीर्वाद बरसने लग जाए। वीरानी ज्वेलर्स लेकर आए हैं 9 golden opportunities for you to win 9 gold chains only on मिर्ची। Yes, लकी विनर्स जीत सकते हैं gorgeous gold chains, क्योंकि मिर्ची 9 luck का हार चल रहा है, brought to you by वीरानी ज्वेलर्स। और पार्टिसिपेट करना है, काफी सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले व्हाट्सएप खोलो, नवरात्रि टाइप करो, 9033 मिर्ची पर भेजो, यानी कि 9033647244, या फिर डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर। मेरा हैंडल नेम है MIRCHIPRIS, दैट्स मिर्ची प्रिस। नवरात्रि टाइप करो, अपना नाम और फोन नंबर दोनों लिखकर मुझे भेज दो इंस्टाग्राम पर, एंड देन वेट फॉर माय कॉल। एंड क्योंकि फेस्टिवल का माहौल चल रहा है, शॉपिंग का मूड भी होगा तुम्हारा, वीरानी ज्वेलर्स ओक ट्री रोड पर विजिट करना बनता है, क्योंकि वहां पर स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। और ज्यादा डिटेल्स के लिए वीरानीज्वेलर्स.com पर जाकर चेकआउट करो और इस नवरात्रि को अपने घर ढेर सारा लक और माता रानी की कृपा लेकर आओ। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स से काम चलाओ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो केक तो काटोगे ही, लेकिन इमेजिन शेयरिंग योर हैप्पी वाला बर्थडे विद द वुल्वरीन हिमसेल्फ। यस, आज के सेलेब लिस्ट में किस किस के नाम है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले वी हैव ह्यू जैकमैन, हु यूज्ड टू प्ले वुल्वरीन, अभी भी शायद वही प्ले करने वाले हैं, हु नोज, ही इज टर्निंग 58 टुडे। देन वी हैव गॉट हंगर गेम्स से जॉश हचसन, ही टर्न्स 34 टुडे। एंड देन वी हैव गॉट शोगन के ब्रिलियंट हीरोयुकी सनादा, हु टर्न्स 66 टुडे। साथ में आज है बर्थडे द लेजेंडरी ओपेरा सिंगर लुशियानो पावरोटी का। एंड नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिब्रेशन, फेस्टिव सीजन चल रहा है और मिर्ची पर कैसे ना जीतो तुम गोल्ड की चेन कैसी वीरानी ज्वेलर्स, क्योंकि मिर्ची पर चल रहा है मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स, जिसमें नवरात्रि की 9 रातों के तुम्हें गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू विन गॉर्जियस गॉर्जियस गोल्ड चेन्स ऑफ कोर्स फ्रॉम वीरानी ज्वेलर्स। काम सिंपल सा करना है, व्हाट्सएप खोलना है, नवरात्रि टाइप करना है, अपने पूरे नाम के साथ भेज देना है 9033 मिर्ची पर राइट नाउ। 9033647244 इज माय व्हाट्सएप नंबर। साथ साथ में तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। टाइप करो नवरात्रि, साथ में अपना पूरा नाम और नंबर लिखो एंड देन जस्ट वेट फॉर माय कॉल एंड मे बी यू कुड बी द नेक्स्ट लकी विनर ऑफ मिर्ची 9 लाख का हार। अभी के लिए मिर्चीदार बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉकस्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में, और अब टाइम है गोल्ड रेट अपडेट का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
1: RajJewels.com wishes happy गणेश चतुर्थी टू everyone। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,280, $4,280 पर ट्रायंस के साथ इस गणेश चतुर्थी की सेलिब्रेशन के लिए हम आपको इनवाइट करते हैं RajJewels.com पे, जहां पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड। आप आज गोल्ड के थोड़े से रिड्यूस प्राइजेस का बेनिफिट ले सकते हैं और RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर सुना तुमने एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ। बने रहो इंस्टा और एक्स पर भी। मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। टाइम फॉर अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले खबर इंडिया से। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट की लिस्ट से हटा दिया है। अब अल्टरनेटिव्स हैं रामलीला ग्राउंड, बुरारी ग्राउंड एंड सीबीडी ग्राउंड। जंतर मंतर 1993 से प्रोटेस्ट का मेजर वेन्यू रहा है। क्रिटिक्स आर क्वेश्चनिंग व्हाट दिस मींस फॉर सिटीजंस राइट टू प्रोटेस्ट। नंबर टू पर सैफ अली खान जॉइंस इंस्टाग्राम। छोटे नवाब साहब इज फाइनली ऑनलाइन। सैफ अली खान ने इंस्टाग्राम डेब्यू किया है और फर्स्ट पोस्ट का कैप्शन है द पटौदी लाइब्रेरी जजिंग बुक्स बाय देयर कवर। वाह साहब, रॉयल एंट्री तो मार ली उन्होंने, लिटरली कैप्शन भी रॉयल था। एंड द फर्स्ट फॉलोअर्स वाइफ करीना कपूर, मतलब कि सोशल मीडिया पर भी बेगम फर्स्ट, बाकी सारा जहां बाद में। एंड फाइनली क्रिकेट से, इंडिया ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट 223 ऑल आउट स्कोर डिफेंड करके मैच 14 रन से जीत लिया है। वेस्ट इंडीज मैनेज्ड 209 for 7 एंड इंडिया नाउ लीड्स द 5 मैच सीरीज 2-1। भाई इतने रन तो हम ग्रुप चैट में भी नहीं बना पाते यार। एंड दैट्स इट फॉर योर मिर्ची आवर के 3। मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा। इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट।
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर।
1: रंग बता।
2: एक लाल एक हरा।
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर। लेकिन सिचुएशन है। आस पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
1: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
2: बिल्कुल
1: फटना नहीं चाहिए। आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है।
2: ठीक है।
1: हरा काट के देख।
2: धीरे से। 1, 2, 3 Congratulations.
1: ताली बज रही है? कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर। ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे। ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है।
2: हाँ।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हॉट स्टार्स तुम्हें क्या इशारा करना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में आई गॉट विद मी राशि जोन का पहला पार्ट।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, बिजनेस में कॉन्फिडेंस रखो, रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा पेशेंस रखो, हर बात को बैटल फील्ड बनाना जरूरी नहीं है। आज लकी कलर है टील, लकी नंबर इज 17। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, पेंडिंग बिल्स और टू डू लिस्ट को पहले निपटाओ, अडल्टिंग का असली ग्लो अप तभी आएगा। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 4। जेमिनी यानी मिथुन राशि, चार्म ऑन, कम्युनिकेशन क्लियर, स्पेंडिंग अंडर कंट्रोल, क्रेडिट कार्ड को भी आज थोड़ा सा मेडिटेशन करने का मौका दो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, रिलेशनशिप्स में वार्म्थ बढ़ने वाली है, बस टेम्पर एंड टायर्डनेस को मैनेज करो, हर मूड को मोनोलॉग मत बनाओ यार। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 8। लियो यानी कि सिंह राशि, ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। रॉयल ट्रीटमेंट चाहिए तो पहले रॉयल कम्युनिकेशन करना सीखो। लकी कलर इज एमरल्ड, लकी नंबर इज 13। वर्गो यानी कन्या राशि, माइंड शार्प है, फैमिली सपोर्ट स्ट्रांग है, करियर और फाइनेंसेस प्लान करने का परफेक्ट टाइम है, स्प्रेडशीट्स भी आज तुमको सलूट करेगी। लकी कलर इज मस्टर्ड येलो, लकी नंबर इज 26। एंड दैट्स योर राशि जोन का पहला पार्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप, स्टे ट्यून्ड।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि ज़ोन।
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, आज योर चार्म इज डूइंग ओवर टाइम। पुरानी डिसएग्रीमेंट्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हो, बस लोअर बैक फटीग को थोड़ा सा इग्नोर मत करना। लकी कलर इज रोज पिंक, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है, थोड़ा सा इमोशनल डीक्लटरिंग भी जरूरी है। हर बात इंस्टाग्राम स्टोरी पर डालना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। लकी कलर इज इंडिगो, लकी नंबर इज 29। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फ्रेंड्स और नेटवर्किंग से करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ग्रुप को सिर्फ मीम्स के लिए मत यूज करो। लकी कलर है सैफरन, लकी नंबर है 6। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, कॉन्फिडेंस हाई है, सोशल वाइब्स जो है काफी हार्मोनियस रहने वाली है। आज अपने अचीवमेंट्स को है ओन करो, हम्बल रहना है लेकिन इनविजिबल नहीं। लकी कलर है चारकोल ग्रे, लकी नंबर है 24। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, रेस्टलेस फील कर रहे हो, दिल की बात क्लियरली बोलो, पीपल माइंड रीडर नहीं होते हैं, इवन इफ दे लीव यू ऑन रेड। लकी कलर है टर्कोइज, लकी नंबर है 15। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यानी कि मीन राशि, रिलेशनशिप्स में पेशेंस रखो, एम्पथी से टेंशन कम होती है। हर डिसएग्रीमेंट को सीजन फिनाले मत बनाओ। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 3। एंड दैट्स योर कॉस्मिक चेक इन यानी राशि जोन पार्ट 2। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्ची जीतू राज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्ची के साथ। अजय बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और इस नवरात्रि माता रानी की ब्लेसिंग्स के साथ साथ अगर घर में तुम्हारे सोना आ जाए तो क्या कह रहे हैं। दिस इज प्रिसिला विथ यू। मिर्ची मॉर्निंग्स का रैप अप टाइम चल रहा है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें याद दिला दूं, नवरात्रि की 9 रातों को 9 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तुम्हें मिल रही है। मिर्ची के साथ पूरे 9 लकी विनर्स जीत सकते हैं गोल्ड चेन्स कर्सी वीरानी ज्वेलर्स, क्योंकि मिर्ची 9 लक का हार चल रहा है, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। और पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा ईजी है, व्हाट्सएप पर भेजो नवरात्रि और अपना पूरा नाम 9033647244 पर, या फिर तुम मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल ढूंढो मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, वहां पर लिखकर भेजो नवरात्रि, अपना पूरा नाम, अपना फोन नंबर और अपना ईमेल आईडी, एंड देन जस्ट वेट फॉर माय कॉल, जिसके बाद मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्टेस्ट खेलने वाली हूँ और हो सकते हैं अगले लकी विनर मिर्ची 9 लक का हार ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स तुम ही हो। ऑल द बेस्ट फॉर दैट, जल्दी जल्दी अपना लक आजमाओ, रजिस्टर करो, एंड अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम मी। यू हैव अ ग्रेट मंडे एंड अ ग्रेट डे अहेड, मिलूंगी तुमसे कल सेम टाइम सेम प्लेस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा, शब्बा खैर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी होता होगा कि तुमने कोई चीज बहुत मन से, बहुत शिद्दत से बनाई हो, एंड यू वांटेड एवरीबॉडी टू अप्रिशिएट दैट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों को ना तारीफ करने का मन ही नहीं किया. तो डिसअपॉइंटिंग तो लगता ही है. पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया. और आते ही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगा था देवानंद और विजय आनंद साहब को, दोनों ब्रदर्स को, जब उन्होंने बनाई थी फिल्म गाइड. तो जब गाइड का प्रीमियर हुआ ना, पूरी इंडस्ट्री वॉज इन्वाइटेड, एंड विजय आनंद को लगा था कि थोड़ी ऑफ बीट फिल्म है, थोड़ी उनकी जितनी भी कमर्शियली सक्सेसफुल, यू नो, चटपटी मसालेदार बॉलीवुड फिल्में हैं उनसे अलग है, तो लोग आकर के ना उनको अप्रिशिएट करेंगे, कंग्रेचुलेट करेंगे कि कितना अलग कुछ बना दिया है. लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं. नोबडी वॉकड अप टू हिम एंड कंग्रेचुलेटेड हिम, एंड दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्यों. लोगों को एक्चुअली गाइड का क्लाइमैक्स और इतनी अलग फिल्म ना पसंद ही नहीं आई, स्पेशली जो लोग प्रीमियर देखने आए थे, यानी भाई इंडस्ट्री के लोग. फिर क्या हुआ, गाइड यू नो इतनी सक्सेसफुल कैसे हुई, ये भी इंटरेस्टिंग कहानी है, सब बताऊंगी. अभी अभी तो आई हूँ, थोड़ा सा इंतजार करो. पुरानी जीन्स पे दिस इज मी श्रेया.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो।
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आ गए मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊँ?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊँ? ये सब इसके टैबलेट्स आती है, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूँ तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं। अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा है ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th level। अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: ये पकड़ा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी बॉक्स ऑफिस पे खुली तो एकदम फुल हाउस थी, लेकिन उसके बाद सब डिप करने लगा। लोग आ नहीं रहे थे देखने, टिकट्स बिक नहीं रहे थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म गाइड, जिसमें थे देव साहब, उनके भाई विजय आनंद ने फिल्म बनाई थी ऑन द वेरी वेरी पॉपुलर बुक द गाइड विच वॉज रिटन बाय आर के नारायण। तो मैं बता रही थी कि जब लोगों को ये पता चला कि भाई देव साहब की फिल्म है तो लोग डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे इसको देखने गए, लेकिन लोगों को ये इतनी अनकन्वेंशनल ऑफ बीट फिल्म और स्पेशली क्लाइमैक्स ना समझ में आने के चक्कर में ना कुछ ही दिनों में इसका कलेक्शन डिप करने लगा। बट कहते हैं बाय वर्ड ऑफ माउथ ये फिल्म इतनी पॉपुलर हुई और लोगों को जब इसका क्लाइमैक्स कुछ समझ में आया तो लोग वापस इस फिल्म को देखने लगे। आई मीन दिस वॉज वन ऑफ दोज फिल्म्स जिसको लोगों ने दो दो तीन तीन बार जा करके देखा एंड इसीलिए बाद में इसका कलेक्शन ओ हो हो आसमान छूने लगा। दैट इज वाई 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते थे इस फिल्म ने उस साल। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ, सो डोंट यू गो एनीवेयर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इन्होंने तो इसको द मिसगाइडेड काइट बोल दिया था। पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिक हिट फिल्म जिसमें थी वहीदा रहमान, जिसमें थे देव आनंद साहब, विजय आनंद ने बनाई थी। मूवी का नाम द गाइड। ये फिल्म जो थी ये अडेप्टेशन थी आर के नारायण की वेरी पॉपुलर फिल्म द गाइड की। तो भाई उनसे सारी परमिशन ली गई थी इस फिल्म को बनाने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा बॉलीवुड का तड़का तो डालना ही था ना, इसीलिए थोड़ा रोमांस एंगल भी दिखाया गया। बट ये बात आर के नारायण को बिल्कुल पसंद नहीं आई। आफ्टर ही सॉ द फिल्म ही गेव एन इंटरव्यू टू अ मैगजीन जिसमें उन्होंने कहा था कि ये द मिसगाइडेड गाइड है। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें, इसी फिल्म के गाने विद मी श्रेया। तो बस यहीं पे रहना पड़ेगा।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं आपको बता रही थी कि देव आनंद और विजय आनंद ने भाई जब अपने म्यूजिशियंस फॉर द फिल्म चूज किए, उनको हायर किया, तो उसमें थे हसरत जयपुरी साहब एज लिरिसिस्ट। लेकिन कुछ टाइम देने के बाद ना दोनों भाइयों को हसरत जयपुरी साहब के गाने कुछ समझ नहीं आए, तो उन्होंने शैलेंद्र जी को हायर किया। शैलेंद्र जी ने इस फिल्म के गाने बनाने शुरू किए। लेकिन जब हसरत जयपुरी साहब जा रहे थे और शैलेंद्र जी आ रहे थे, तो हसरत साहब ने ना एक गाना जो आधा अधूरा था वो सुनाया था शैलेंद्र जी को, और उस गाने की जो पहली लाइन थी ना वो शैलेंद्र जी ने रखी। वो गाना ये था, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है ना, ये लाइन दी थी हसरत साहब ने, आगे इसको कंटिन्यू किया शैलेंद्र जी ने।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

विजय आनंद ने दादा को बोला था कि इस पूरे गाने को ऐसे कंपोज करो जैसे हर स्टैंजा ना अलग गाना है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड, इस फिल्म की बातें और इस फिल्म के गाने। अच्छा, ये एक गाना जो गाइड का था ना, दिस वॉज अ वेरी टफ सॉन्ग टू कंपोज। एक तो ये लंबा भी था, इसमें हरकतें भी बहुत सारी थी और दादा को ना थोड़ा प्रॉब्लम आ रही थी। तो विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म, उन्होंने पता है उनसे क्या कहा कि हर स्टैंजा को ऐसे कंपोज करो जैसे कि ये अलग गाना हो। एंड विजय आनंद ऑल्सो थॉट कि गाइड में ना वो हर स्टैंजा को अलग अलग जगहों पे दिखाएंगे, ऐसे ही पिक्चराइज करेंगे, जबकि वो हुआ नहीं बिकॉज वहीदा रहमान का खूबसूरत डांस इस गाने में था। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर। आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर। ये दो है, एक लाल है, एक हरा, इसमें से कौन से काटना है
3: सर?
4: एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
3: टाइम कितना है
4: सर? डेढ़ से दो मिनट।
3: पीछे हो गया
4: फिर कटेगा कैसे?
3: भारी सामान
4: तो नहीं है सर।
3: रंग बता।
4: एक लाल एक हरा।
3: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से।
4: कैंची ले ली सर।
3: रुकी जरा, एक मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा यार, सोच रहा था, बहुत तूने एकदम इमीडिएट फोन कर दिया।
4: तो कर दिया, लेकिन सिचुएशन है।
3: जी, मैं सोच रहा हूँ, आसपास कोई भी नहीं है।
4: आसपास है, लेकिन हिलने का टाइम नहीं है। हिल नहीं रहे।
3: एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा।
4: हाँ, बिल्कुल।
3: फटना नहीं चाहिए, आसपास के लोगों को भी सिक्योर कर दे।
4: ठीक है।
3: हरा काट के देख। धीरे से।
4: वन टू थ्री। कंग्रेचुलेशंस।
3: ताली बज रही है? कौन है?
4: ये ताली बजा रहे हैं सर, ये रिबन काटना था ना, मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था। अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटें। ठीक है,
3: शोरूम का रिबन काट रहा है। हाँ।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: ये पटा।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

दादा ने अपना पूरा बटुआ खाली कर दिया था मेलोडीज से भरा हुआ फॉर दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड 1970s में फिल्म आई थी गाइड, जिसकी आज बात हो रही है। सो नवकेतन फिल्म्स यानी देव साहब का बैनर और उनके भाई विजय आनंद का बैनर, वो हमेशा जब भी फिल्म बनाते थे तो एसडी बर्मन साहब को हायर करते थे। इस बार क्या हो रहा था कि दादा उस टाइम पे आ चुके थे जब उनकी जगह नए म्यूजिशियंस को हायर किया जा रहा था, फिर चाहे वो उनके बेटे आर डी बर्मन साहब ही क्यों ना हो। सो एसडी बर्मन साहब को ना एक मौका, वो एक फिल्म चाहिए थी जिसमें वो अपना मिरेकल एक बार फिर से दिखा पाए, एंड गाइड प्रूव्ड टू बी वन ऑफ देम। व्हाई? बिकॉज उन्होंने अपना सारा बटुआ खाली कर दिया। मेलिफ्लुइस ट्यून्स लाइक आओ, गाता रहे मेरा दिल ले लो, तेरे मेरे सपने ले लो, यू नो इतने सारे गाने, कांटों से खींच के आंचल ले लो, पिया तो से ले लो। तो इसी बात पे आज फिर जीने की तमन्ना है। कमिंग ऑन राइट नेक्स्ट, मैं हूँ श्रेया। एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया है, लता जी की आवाज है और वहीदा रहमान का डांस था, शैलेंद्र जी के लिरिक्स। अप नेक्स्ट फिल्म।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव आनंद को लगा कि उनका कोई सिग्नेचर ट्यून, सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं इस फिल्म में, और फिल्म काफी टाइट चल रही, काफी स्ट्रेस में चल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड टुडे। सो देव साहब ने जब ये पूरी पिक्चर बन गई और देखी अपने भाई विजय आनंद हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल उनके साथ बैठ करके ना, तो देव साहब को लगा कि भाई इसमें मेरा कोई सिग्नेचर गाना तो है ही नहीं, क्योंकि वो जनरली एक आध गाना ऐसा सुपर डुपर हिट देते थे अपनी फिल्म का जिसमें बस वो गुनगुना रहे हैं और चलते जा रहे हैं, जैसे कि हम दोनों में है ना, मैं जिंदगी का साथ निभाता, राइट। तो क्या हुआ, जब पूरी पिक्चर कंप्लीट हो गई फिर इस पे म्यूजिशियंस को वापस बैठाया गया। एस डी बर्मन साहब, शैलेंद्र जी ने गाना लिखा एंड ऑफ कोर्स देव साहब इसमें एकदम अपनी मस्ती में चलते जा रहे हैं और गा रहे हैं मेरा दिल। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉल्स फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर ये फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है, फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब पहला सीन लिया गया तो डायरेक्टर विजय आनंद को लगा कि देव साहब के आगे वैजंती माला तो थोड़ी चबी चबी लग रही है पुरानी जीन्स पे। आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। सो वैजंती माला को इस फिल्म के लिए चूज किया गया था और डायरेक्टर विजय आनंद ने ना ऐसे ही जब फर्स्ट टेक लिया तो दे थॉट कि वैजंती माला देव साहब के आगे थोड़ी प्लम्प लग रही है। अब भाई विचार विमर्श हुआ देव साहब से भी, फिर क्या हुआ, इन केम वहीदा रहमान। और जब वहीदा रहमान आती थी तो एक्टिंग के साथ अपने डांसिंग स्किल्स भी लेकर के आती थी। ये आपको देखने को मिलेगा गाइड में जब उन्होंने वो गाना किया है ना, आज फिर जीने की तमन्ना है। ओ हो हो पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। अगर आपको मुझसे कुछ बात करनी है ना तो बस इस आवाज के पीछे आपको मिल जाऊंगी फेसबुक और इंस्टा पे। हैंडल है मेरा RJ Shreya with Love, that's RJ SHREYA with Love।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इनको फॉरेन भेजा गया था कलर की टेक्निक को बारीकी से समझने के लिए। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। ये नव केतन प्रोडक्शंस की यानी देव साहब की, उनके भाई विजय आनंद की पहली कलर फिल्म थी। अब हुआ ये कि विजय आनंद ने पहली बार एज एडिटर कमान पकड़ी थी अलोंग विद बाबू शेख एंड गाइड वॉज द फर्स्ट कलर फिल्म। सो विजय आनंद चाहते थे कि हर चीज ना एकदम कमाल हो, पहली कलर फिल्म है उनकी खुद की तो इट हैज टू बी परफेक्ट। तो उसके लिए उन्होंने सिनेमेटोग्राफर फेली मिस्त्री जी को ना अब्रॉड भेजा था, हॉलीवुड भेजा था टू नो द टेक्निक टू शूट द फिल्म इन कलर एंड इट केम आउट सो ब्यूटिफुल। अगर आप रेट्रो फैन हैं और आपने गाइड नहीं देखी तो क्या आप रेट्रो फैन हैं? और पता है आपको ये किसने मुझे इंट्रोड्यूस किया था? इट वॉज माई मॉम हू सेड कि बाकी रेट्रो फिल्म के बारे में तुम बहुत बात करती हो, गाइड इज अ मास्टर पीस एंड इट इज। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है इसी फिल्म की।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो,
3: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब?
2: हाँ जी, बात कर रहा हूँ, बताएं।
3: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा, ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
2: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
3: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
2: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
3: भाई साहब, बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था। तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
2: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को, कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
3: चलो मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते होगा आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
2: भैया दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे।
3: तो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना।
2: टाइम खराब कर रहे हैं,
3: नहीं ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई।
2: मेरा क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
3: तो मेरा
2: कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
3: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
2: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
3: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
2: भाई, जाकर जाकर नहीं कंप्लेंट कर दे।
3: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
2: मैं नहीं दे रहा तुझे, जहाँ कंप्लेंट करनी है कर दे,
3: मैं निकलवा लूंगा। और उसको संभाल के रखना, मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
2: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लेबर कोर्ट, जहाँ पे भी जाना है।
3: मैं देखता हूँ मेरा यूरिन कैसा।
2: हाँ ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
3: ठीक है भाई,
2: हाँ ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: इट पटक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब को ये गाना बिल्कुल नहीं पसंद आया था। फिर उन्होंने कहा कि चलो भाई, विजय यानी उनके भाई विजय आनंद, हु वाज एडिटिंग द फिल्म, हु वाज डायरेक्टिंग द फिल्म एज वेल, चलो एक काम करते हैं, गाना बना लो, बाद में देखेंगे रिटेन करना है कि नहीं करना है। बट बाय द टाइम इस गाने की शूट एंड हुई, ही लव्ड द सॉन्ग। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ गाइड फिल्म की बात हो रही है, देव साहब की फिल्म थी ये, एंड इस फिल्म का म्यूजिक देने वाले एस टी बर्मन साहब, गाने लिखने वाले शैलेंद्र जी, और उन्होंने एक गाना लिखा जिसपे वहीदा रहमान ने क्या परफॉर्मेंस दी। द सॉन्ग वॉज, अब ये गाना जब बनने लगा ना तो देव साहब को बिल्कुल नहीं पसंद आया, उनको लगा कि क्यों ही रख रहे हम ये गाना। लेकिन बाय द टाइम ये गाना शूट होकर के एकदम कंक्लूड हो रहा था, ही लव्ड द सॉन्ग, एंड फिर इस गाने को रिटेन किया गया, एंड व्हाट अ प्रिटी प्रिटी सॉन्ग। ये गाना मैं ऑलरेडी आपको सुना चुकी हूँ तो फिर से नहीं सुनाऊंगी। लता जी का ही एक और गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

ये मूवी दो वर्जन्स में शूट हुई थी, एक इंग्लिश वर्जन में इन कोलैबोरेशन विद पर्ल एस बक, डायरेक्टेड बाय टेड डैनियल ल्यूस्की, एंड इट वाज टू इंट्रोड्यूस देव आनंद साहब टू वेस्टर्न ऑडियंस। और हिंदी वर्जन उसके बाद में आया जब देव साहब के छोटे भाई विजय आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया। पहले ये था कि भाई एक ही वर्जन को वापस शायद डब कर लेंगे, लेकिन नहीं, देव साहब को लगा कि भाई ये तो चीटिंग हो जाएगी हिंदी ऑडियंस के साथ। और फिर हाँ, बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैशेस भी हुए थे, जिसकी वजह से देव साहब ने इसकी बागडोर संभाली, अपने भाई को भी संभलवाई और नफ केतन प्रोडक्शंस के अंडर में ये फिल्म को बनाया गया। टॉकिंग अबाउट द फिल्म ऑफ कोर्स गाइड, पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो हाईवे पे भी जाना है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज Only on Mirchi, it's hot.
2: And Ajay Devgan के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. यह अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है, और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा, आज का हाईवे हिट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं, और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: कुछ शो सिर्फ शोज नहीं होते, वो पूरी जनरेशन की मेमोरी बन जाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और करण जौहर के अल्टीमेट काउच पे एकदम मस्त वाली कॉफी पीते हुए जो सेलिब्रिटी इंटरेक्शंस हुए हैं इन द शो कॉफी विद करण इज वन ऑफ देम। 2004 में शुरू हुआ था ये शो और देखते ही देखते 8 सीजन्स, 22 साल और 161 एपिसोड्स का सफर तय कर गया, जहां करण जौहर के काउच पर सेलिब्रिटीज आए, कॉफी के साथ कन्फेशंस हुए, रैपिड फायर राउंड्स में सीक्रेट्स निकले और कुछ ऐसे मोमेंट्स

मिले जो लिटरली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। और अब जब करण जौहर ने अनाउंस कर दिया कि भाई ये सीजन 8 इज गोइंग टू बी द लास्ट ब्रू ऑफ द शो, तो थोड़ा अजीब तो लग रहा है, क्योंकि यार हमारी जनरेशन ने ना इस शो पे सिर्फ सेलिब्रिटीज को कॉफी पे बात करते हुए नहीं देखा, हमने उनकी पर्सनालिटीज, उनकी फ्रेंडशिप्स, कंट्रोवर्सीज और वल्नरेबिलिटीज को भी उस काउच पर अनफोल्ड होते देखा है। 22 सालों तक कॉफी विद करण ने बॉलीवुड को सिर्फ इंटरव्यू नहीं किया, उस कहानी का एक हिस्सा बन गया। और शायद इसीलिए इसका लास्ट एपिसोड सिर्फ एक शो का फिनाले नहीं, एक एरा का गुड बाय लगेगा। वैसे ऑलरेडी इस शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है एंड 14th ऑफ अक्टूबर से इट इज गोना स्ट्रीम ऑन जियो हॉटस्टार, जब करण जौहर की ये वाली लेगेसी विल कम टू एन एंड। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vida la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आया ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दो अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना, फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15, वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। भाई, मच लव्ड फिल्म हनुमान अंश अब तेलुगु ऑडियंस के लिए भी अवेलेबल हो चुकी है, बिकॉज 9 सितंबर को ये फिल्म वहां भी रिलीज हो चुकी है। सो डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी ने ये स्टेप पब्लिक डिमांड पे ही लिया था, एंड नाउ आई एम श्योर द पब्लिक इज रियली रियली हैप्पी अबाउट इट। मुन्ना भैया और कंपाउंडर एक बार फिर साथ आ रहे हैं। हाँ जी, दिव्येंदु और अभिषेक बैनर्जी की बात कर रही हूँ, जो एक नए वेब सीरीज के लिए साथ नजर आएंगे। वेल, ये वेब सीरीज एक एम्पायर स्टाइल ड्रामा होगी, एंड गैंगस्टर सेटिंग से इस बार चीजें यहाँ अलग होंगी। डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन। अनीत पाडा की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी और शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म किंग एक ही दिन रिलीज होने वाली थी, यानी कि क्रिसमस ईव पर। बट अब रिपोर्ट्स हैव इट दैट दिनेश विजन की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये अगली फिल्म शक्तिशालिनी को लेकर मेकर्स अब नया रिलीज डेट प्लान कर रहे हैं, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन मार्च 2027। चलो, देर आए दुरुस्त आए। मैं तो कब से सोच रही थी यार कि किंग के ऑपोजिट क्यों ही कोई और फिल्म लानी है। वेल, मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नॉडी नॉडी नॉडी माइंड, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ, फिल्मी वाला। आप कहाँ जा रहे हो? चलिए वापस आ जाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश कर सकूं। तो आज इस कोशिश की शुरुआत की गई है विद निखिल। हाउ आर यू?
3: मैं बढ़िया हूँ, मेरे को जल्दी से फिल्म की खेलना है।
0: इंतजार नहीं हो पा रहा है तो लीजिए फिर पहला सवाल है। आलू ले लो।
3: अरे वो वेलकम।
0: हाँ, वेलकम में घुंघरू सेठ कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल किस फिल्म में बोलते हैं पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अब किडनी में भी हो रहा है?
3: अब मैं श्योर नहीं हूँ। फिर हेरा फेरी।
0: यस यू आर राइट। फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम कौन लेके आता है?
3: बिपाशा बासु।
0: वेरी गुड। बिपाशा बासु की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग का मामला है?
3: ओ, वो वाला हामी में जो अजनबी।
0: हाँ, अजनबी में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: या दूसरे हीरो।
0: वाह, क्या जवाब है। दूसरे हीरो। पहले हीरो कौन थे?
3: पहले तो वो हैं अक्षय भाई अपने।
0: हाँ, तो दूसरे कौन है?
3: सनी देओल।
0: नहीं, है तो
3: देओल। बॉबी देओल के भाई। अरे बॉबी देओल।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: नाड़ी नाड़ी नाड़ी माइंड, मैं तो गेम खेलने की बात कर रही हूँ, फिल्मी वाला। आप कहाँ जा रहे हो? चलिए वापस आ जाइए। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाने की कोशिश कर सकूं। तो आज इस कोशिश की शुरुआत की गई है विद निखिल। हाउ आर यू?
3: मैं बढ़िया हूँ, मेरे को जल्दी से फिल्म की खेलना है।
0: इंतजार नहीं हो पा रहा है तो लीजिए फिर पहला सवाल है। आलू ले लो।
3: वो वेलकम।
0: हाँ, वेलकम में घुंघरू सेठ कौन है?
3: परेश रावल।
0: परेश रावल किस फिल्म में बोलते हैं पहले हार्ट में होता था हार्ट अटैक, अब किडनी में भी हो रहा है?
3: अब मैं श्योर नहीं हूँ। फिर हेरा फेरी।
0: यस यू आर राइट। फिर हेरा फेरी में 21 दिन में पैसे डबल करने की स्कीम कौन लेके आता है?
3: बिपाशा बासु।
0: वेरी गुड। बिपाशा बासु की किस फिल्म में वाइफ स्वॉपिंग का मामला है?
3: ओ, वो वाला हामी में जो अजनबी।
0: हाँ, अजनबी में करीना के हस्बैंड कौन है?
3: यार दूसरे हीरो।
0: वाह क्या जवाब है, दूसरे हीरो। पहले हीरो कौन थे?
3: पहले तो वो हैं अक्षय भाई अपने।
0: हाँ, तो दूसरे कौन है?
3: सनी देओल।
0: नहीं नहीं, है तो
3: देओल के भाई। बॉबी देओल।
0: बॉबी देओल का किस फिल्म में उनका कैरेक्टर

गया, डरने लगे लोग, ऐसा तूफान बन गया। और क्या कहूं मैं, सारा जहां था उसके कदमों में।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर, कैंची ले ली. लेकिन सिचुएशन है.
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आस पास के लोगों को भी इससे क्या करना है?
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख.
2: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना. मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इट्स हॉट.
5: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
3: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची. इट्स हॉट.

0: गरबा ग्लैमर और बॉलीवुड का तड़का
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। नवरात्रि हो और बॉलीवुड म्यूजिक की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। जहाँ एक तरफ है संजय लीला भंसाली की ग्रैंड दुनिया, जहाँ हर ट्वर्ल एक पेंटिंग लगती है, हर कॉस्ट्यूम एक मास्टरपीस और हर बीट पर दिल झूम उठता है, और दूसरी तरफ है वो देसी गरबा जहाँ कॉलोनी का डीजे, दोस्तों की टोली और मिसमैच्ड स्टेप्स के बावजूद एनर्जी फुल पावर होती है। तो आज पांच का पंच की लिस्ट में बात उन बॉलीवुड सॉन्ग्स की जिन्होंने नवरात्रि को सिल्वर स्क्रीन से निकाल कर हमारी रियल लाइफ का सेलिब्रेशन बना दिया। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग ओ शेरो वाली। अब नंबर दो पे दी एपिक ढोली तारो ढोल की बात करना चाहती हूँ फ्रॉम द फिल्म हम दिल दे चुके सनम, जो रिलीज हुई थी 1999 में। डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, इस फिल्म में सलमान खान, ऐश्वर्या राय बच्चन और अजय देवगन लीड रोल्स में थे, और इस गाने ने इंडस्ट्री में एंट्री लेने के बाद से हर जनरेशन को रूल किया है। कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, कृष्णा सगाथिया, इन तीनों की आवाज ने क्या ही कमाल बांधा है। म्यूजिक है इसमें इस्माइल दरबार का, लिरिक्स है महबूब के, एंड दिस इज अ क्विंटेसेंशियल बॉलीवुड गरबा स्पेक्टिकल। इलैबोरेट कॉस्ट्यूम्स हैं, मैसिव सेलिब्रेशन है, इलेक्ट्रीफाइंग कोरियोग्राफी है, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बॉलीवुड टर्निंग अ रीजनल सेलिब्रेशन इनटू अ नेशन वाइड डांस एंथम। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साल 2013 में रिलीज हुई फिल्म काई पोचे के सॉन्ग शुभारंभ के बारे में। फिल्म को डायरेक्ट किया था अभिषेक कपूर ने, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, राजकुमार राव और अमित साध लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और भाई आज भी जब ये गाना किसी भी गली मोहल्ले में बजता है तो हवाओं में एक अलग सी खुशबू घुल जाती है।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: अहमदाबाद की रात से अपनी कॉलोनी के पंडाल तक
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: भाई। बॉलीवुड का नवरात्रि यूनिवर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कहीं तो इतने ग्रैंड गरबा ग्राउंड्स की लगता है पूरा शहर वहाँ ही आ गया हो, और कहीं हीरो हीरोइन के चक्कर में गरबा से ज्यादा नजरें मिल रही हैं, और फिर वो छोटे शहर वाली फीलिंग जहाँ पूरी कॉलोनी को पता है कि कौन किस कलर में आने वाला है और किसकी एंट्री का सबको इंतजार है। तो मैंने सोचा आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू उन गानों की प्लेलिस्ट बनाई जाए जहाँ लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल भी है और मिट्टी की खुशबू भी। लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग ओ शेरो वाली, नंबर दो पे हमने ढोली तारू की बात की, नंबर तीन पे वी डिस्कस्ड अबाउट शुभारंभ, और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट द सॉन्ग नगाड़ा संग ढोल। साल 2013 में रिलीज हुई थी फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला। संजय लीला भंसाली डायरेक्टोरियल इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लीड रोल्स में नजर आए हैं, जहां नवरात्रि को लार्जर देन लाइफ स्पेक्टिकल बनाया गया। और आज भी जब ये गाना बजता है तो हर दूसरी लड़की दीपिका पादुकोण का वो स्टेप जरूर कॉपी करने की कोशिश करती है। श्रेया घोषाल और उस्मान मीर की आवाज, जिसमें संजय लीला भंसाली का म्यूजिक है, लिरिक्स हैं सिद्धार्थ और गरिमा के, एंड ये गाना इज नवरात्रि एट इट्स मोस्ट लार्जर देन लाइफ। चलो अब लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट नंबर पांच पे डिस्कस करना चाहती हूँ अबाउट द सॉन्ग ढोलीरा फ्रॉम द फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, अगेन डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जो रिलीज हुई थी साल 2022 में, और इसमें आलिया भट्ट एंड शांतनु महेश्वरी लीड रोल्स निभाते नजर आए थे। और फिल्म का जो सेटअप है उसमें ये गाना जब आता है और जिस हिसाब से हमारी आलिया इस पे परफॉर्मेंस देती है इज सच अ स्पेक्टिकल टू वॉच। जानवी श्रीवंकर की पावरफुल

0: बस तुम रहते हो।
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन also for people who follow टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है. अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज, 3.5 मिर्चीज के साथ. अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू.
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
3: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना.
4: हिट गाना.

0: अगली बार मूवी देखने जाओ तो इस इंसान को थैंक यू बोलना।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वी वेरी वेल नो कि मूवी देखने जाने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पेशेंस भी लेकर जाना होता है, क्योंकि पिक्चर शुरू होने से पहले उस पिक्चर के अलावा और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। और इसी फ्रस्ट्रेशन का एक इंटरेस्टिंग केस सामने आया है हैदराबाद से। सो 2025 में एक इंसान गया फिल्म कुबेरा देखने, जिसमें धनुष और नागार्जुन थे, लेकिन उस मूवी के शुरू होने से पहले उसको 22 मिनट तक लगभग एड्स देखने पड़े। मतलब पॉपकॉर्न खत्म होने का रिस्क फिल्म शुरू होने से पहले ही। एंड ऑब्वियसली यार, जब आप टिकट खरीदते हैं तो आप फिल्म देखने के पैसे देते हैं ना, एक मिनी एडवर्टाइजिंग फेस्टिवल तो अटेंड नहीं कर रहे होते। इसी बात को लेकर उस इंसान ने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हैदराबाद का दरवाजा खटखटाया। एंड फाइनली कमीशन ने पिछले महीने इस थिएटर चेन को डेफिशिएंसी इन सर्विस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए जिम्मेदार ठहराया और 20,000 रुपए कॉम्पेंसेशन के साथ 5,000 रुपए लिटिगेशन कॉस्ट देने का ऑर्डर किया टू दैट स्पेसिफिक पर्सन। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से इस थिएटर चेन ने अपने एड टाइम को 15 मिनट से 10 मिनट तक रिड्यूस करने की बात कही है। बट फिलहाल तो मेरे दिमाग में उन लोगों का चल रहा है जो यही 15-20 मिनट का बफर टाइम लेके मूवी देखने जाते हैं। अरे लेट हो रहे हैं तो हो रहे हैं भाई, 9 बजे थोड़ी शुरू होगी मूवी, वो तो 9:15 तक होगी, तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। वेल, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द सेम, वो मुझसे कनेक्ट करके जरूर बताइएगा। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
3: मुझे कहना

दोस्तों, कभी नोटिस किया है, मंडे की मॉर्निंग और मंडे की इवनिंग दोनों बिल्कुल अलग लोग होते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वो इसीलिए क्योंकि मंडे मॉर्निंग में ना हम अलार्म से नेगोशिएट कर रहे होते हैं, कॉफ़ी भी काम जैसी लगती है और इनबॉक्स देख कर तो लगता है कि अरे रे, वीकेंड इतना जल्दी कैसे ख़त्म हो गया। लेकिन मंडे की शाम तक पिक्चर थोड़ी सेटल हो जाती है, मीटिंग्स हो चुकी होती है, ई मेल्स का शौक भी निकल चुका होता है और अब बस घर पहुँचने की रेस चल रही होती है। और मुझे ना इसीलिए मंडे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये वीकेंड और नए हफ्ते के बीच का वो प्यारा सा हैंडशेक होता है, एक रिमाइंडर होता है कि चलो एक और नया चैप्टर शुरू हो गया। तो आज ड्राइव थोड़ी आराम से कीजिए, प्लेलिस्ट थोड़ी लाउड रखिए और स्माइल करना मत भूलिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आज की मंडे की शाम को रिलैक्स करने के लिए आपका बॉलीवुड गो टू सॉन्ग कौन सा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा बॉलीवुड गो टू सॉन्ग ये रहा आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskrabana, uskrabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Mirci, murga.
1: Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकत कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं, सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज, मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन मैंने, क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं तुम?
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी नहीं है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? मेरे को इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी तुमने किसको फोन मिलाया है? जिससे तुम्हें बात करनी है मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आपको कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ना ये है 9th level, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल दे अपनी में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया है उसको और खुद साथ आ। देखो साढ़े मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: गुड इवनिंग दोस्तों, नवरात्रि के 9 रातें यानी गोल्ड जीतने के 9 चांसेस और मिर्ची पर आपकी किस्मत का धमाका। वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लक का हार। तो चलिए देखते हैं आज किसके नाम होती है गोल्ड की चमक। नमस्ते मनन जी।
2: हेलो, नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: एकदम मस्त, आप बताइए।
1: एकदम बढ़िया। क्या आप नवरात्रि के लिए तैयार हो?
2: एकदम, वेटिंग फॉर इट।
1: और क्या आप गोल्ड जीतने के लिए तैयार हो?
2: एकदम एकदम।
1: तो चलिए मैं आपको पूछूंगी एक बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल और नवरात्रि से ही रिलेटेड है, और उसका अगर आप सही जवाब देते हो तो आप पहुंच जाओगे हमारे अगले राउंड में। ठीक है?
2: ठीक
1: है। चलिए, तो आपका बहुत सा आसान सा जो सवाल है वो ये है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा गाना है, नगाड़े संग ढोल बाजे। तो ये जो गाना है, इस गाने पे कौन सी एक्ट्रेस ने डांस किया है?
2: दीपिका पादुकोण।
1: अरे क्या बात है, एक सेकंड भी नहीं लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आप एंटर होते हो हमारे अगले राउंड में। तो दोस्तों, आप भी अगर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हो तो जल्दी से पार्टिसिपेट कीजिए हमारे मिर्ची 9 लक का हार में, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। नवरात्रि की 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो जल्दी से व्हाट्सएप कीजिए, टाइप कीजिए नवरात्रि और भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लाख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

कुछ स्पेशल वीकेंड्स के साउंड्स वो होते हैं जो अलार्म से नहीं आते बल्कि किचन से आते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और चलिए हमारे उन्हीं स्पेशल वीकेंड को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। मतलब टीवी कहीं पर लाउड चल रहा है, कोई न्यूज़पेपर लेकर बैठा है, किचन में से कुकर की सीटी और फिर तड़के की वो खुशबू जो बिना अनाउंसमेंट के बता देती है कि लंच रेडी हो चुका है। और मज़े की बात तो ये है कि बचपन में यही हमारा जो आइडियल वीकेंड हुआ करता था उसमें दाल चावल वैसे तो यार एवरीडे फूड लगता था, लेकिन बड़े होने के बाद घर से जब दूर आए और न्यू जर्सी में अपना किचन बना लिया तब समझ आया कि वो सिंपल से दाल चावल आज कितना स्पेशल है। गरम चावल, ऊपर दाल, थोड़ा घी, और सडनली ये वीकेंड एकदम स्पेशल हो गया। और ऐसे मील्स में ना हीरो फैंसी नहीं होता, हीरो होती है अच्छी क्वालिटी की तूर दाल। दी प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मंधी तूर दाल इज प्रीमियम क्वालिटी इंडियन ओरिजिन दाल स्पेशली सूटेड फॉर फेवरेट्स लाइक गुजराती दाल, सांभर और खिचड़ी। तो दोस्तों अगली ग्रोसरी रन पे घर ले आइए दी प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मधी तूर दाल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और संडे लंच की वॉर्मथ आ चुकी है तो यार अभी यहाँ पर हमारी जो शाम की प्लेलिस्ट है उसका भी एक प्यारा बॉलीवुड नंबर हो जाए, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.
1: And अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3. Now for people जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी. अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसे लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए. अजय देवगन रॉल्स. फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है. ये अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी. अजय देवगन, यू आर अ रॉक स्टार. फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं. एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी. जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर. तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले. एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन. विजय साळगावकर क्या करता है. फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था. जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है. डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव. प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतू राज. हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड. दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ. अजय बेबी, यू रॉक स्टार, वी लव यू.
0: साथ जीतू राज only on Mirchi, it's hot.

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की धूम शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 रातों में गोल्ड चेन जीतने का मौका आपकी किस्मत में है या नहीं, अगर ये जानना है तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए क्योंकि वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची 9 लख का हार। तो दोस्तों, आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है, चलिए देखते हैं। नमस्ते अवनी जी, कैसे हो आप?
2: बस मजे में, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम मजे में, और सबसे ज्यादा मजे में तो इसलिए हूं क्योंकि आपके साथ मुझे मिर्ची 9 लख का हार खेलने मिलने वाला है, brought to you by वीरानी ज्वेलर्स। तो क्या आप excited हो?
2: Yes, yes, I'm very excited.
1: तो अभी आपको मैं पूछूंगी एक सवाल, बहुत ही आसान सा, नवरात्रि से रिलेटेड सवाल, बॉलीवुड से रिलेटेड सवाल। उसका सही जवाब देते हो तो आप पहुंचोगे हमारे नेक्स्ट फाइनल राउंड में जिसमें आप जीत सकते हो गोल्ड चेन। ओके? चलिए, तो अवनी जी आपका सवाल है, एक बहुत ही प्यारा सा नवरात्रि का गाना है, ढोली तारो ढोल बाजे, उसमें सलमान खान के साथ एक्ट्रेस कौन है?
2: ऐश्वर्या राय।
1: पक्का?
2: यस।
1: ओहो, ये तो गलत हो गया, ऐसा मैं नहीं कह सकती। बिल्कुल सही जवाब अवनी जी।
2: Thank you.
1: तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए, यानी मिर्ची 9 लख का हार जीतने के लिए, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों, अगर आप भी मिर्ची 9 लख का हार में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जल्दी से नवरात्रि टाइप कीजिए 9033647244 हमारे मिर्ची के नंबर पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कीजिए @RJMirchiSiddhi, क्योंकि यार एक जो 9 रातें होने वाली है उसमें 9 मौके आपको मिलेंगे टू विन गोल्ड चेन। तो आज ही रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच अवनी जी, सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।
1: आँखों ही आँखों में कर बातें गुपचुप गुपचुप गुपचुप कोई खुस खुस खुस खुस ओए ख्वाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए बुड़ बुड़ बुड़।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: लैब से बोल रहे हैं आप? लैब
1: हाँ जी बात कर रहा हूँ, बताएं।
2: मैंने ना कल यूरिन दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था मुझे। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा जान सकता हूँ थोड़ा सा कि ये टेस्ट कैसे करते हैं? ये
1: ऐसा होता है कि आपके मतलब एक से दो ड्रॉप ही मतलब हम डालते हैं उसमें, उसके थ्रू टेस्ट होता है बस आपका।
2: अच्छा, जो यूरिन दिया है उसके दो तीन ड्रॉप डाल के आप फिर रिजल्ट आता है ना, वो देखते होंगे डॉक्टर क्या कमी है।
1: इस तरह से प्रोसीजर हमारा ये।
2: भाई साहब बस एक आपसे मेरे को ना रिक्वेस्ट करनी है, क्योंकि आप मैंने थोड़ा ज्यादा दे दिया यूरिन, मैंने पूरी बोतल भर के दे दिया था, तो अगर दो तीन ड्रॉप यूज हो रही है ना, तो आप मेरे को जो बचा हुआ है ना वो वापस कर देना।
1: क्या कुछ पागल वागल हो गया भैया? एक बात बताओ आप सर मेरे को कि मतलब अगर दो तीन ड्रॉप की अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ज्यादा सैंपल लेते हैं, इसी वजह से तो लेते हैं।
2: चलो
1: मतलब
2: मैं कह रहा हूँ ज्यादा सैंपल, आप नौ ड्रॉप मान लो, नौ करते हो आप, दो कह रहे हो, मैं तो नौ पकड़ के चल रहा हूं।
1: दो चार नौ का क्या मतलब है? एक हमारा केन होता है, उस केन के थ्रू ही तो आपसे उनने लिया होगा बंदे ने आके हमारे,
2: तो वही मैं कह रहा हूँ उसमें से आप तीन ड्रॉप निकाल के जो मेरी चीज है वो तो वापस कर दो ना,
1: टाइम खराब कर रहे हैं।
2: ये तो ये हो गया ना, इंसान को लूटने वाली बात हो गई, मेरा
1: पेशाब लूट रहे हो आप। बात क्या हो गई? तो भाई अगर तेरे को टेस्ट कराना
2: तो मेरा यूरिन
1: सैंपल कहीं और दे देता, फिर सैंपल वापस।
2: यार सैंपल मैं वहां से भी वापस लेता, मैं लेबर कोर्ट में जाऊंगा, मेरी चीज है आपके पास।
1: किसी भी कोर्ट में जा भाई, जो प्रोसीजर है वही तो फॉलो करूंगा। ये
2: मैं आपके बॉस से कंप्लेंट करूंगा
1: भाई, जाकर नहीं कंप्लेंट कर देगा।
2: मतलब आप नहीं दे रहे मेरा यूरिन?
1: मैं नहीं दे रहा तुझे, जाकर कंप्लेंट नहीं कर देगा।
2: ठीक है, मैं निकलवा लूंगा, ठीक है, और उसको संभाल के रखना। मैं अभी कोर्ट जाऊंगा, उसको संभाल के रखना, फेंकना मत।
1: अरे भाई किसी भी कोर्ट में जा, सुप्रीम कोर्ट जा, हाई कोर्ट जा, लेबर कोर्ट जा, जहां पे भी जाना है।
2: मैं देखता हूं मेरा यूरिन कैसे वापस।
1: हां ठीक है, देख ले देख ले देख ले।
2: ठीक है भाई,
1: हां ठीक है।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वीकेंड तो बहुत ही खूबसूरत था, वेदर भी अब फुल समर मोड में आ चुका है, लेकिन फाइनेंशियल वेदर थोड़ा मिक्स चल रहा है। मार्केट चेंज हो रहे हैं, मॉर्गेज रेट्स मूव कर रहे हैं और नेचुरली बायर्स के माइंड में सवाल भी बढ़ रहे हैं कि यार अभी बाय करें, वेट करें या अपने एग्जिस्टिंग होम इक्विटी को किसी बिगर फाइनेंशियल गोल के लिए यूज करें। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स से लेकर रीफाइनेंसिंग कंसिडर करने वाले होम ओनर्स तक हर किसी के लिए सिचुएशन अलग है और सही इंफॉर्मेशन ऐसे वक्त में बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। और इसी चेंजिंग लैंडस्केप को सिंपल वर्ड्स में समझाने के लिए मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है और तैयारियां शुरू हो चुकी आपको सोने की चेन्स देने का भी, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट मिर्ची 9 लख का हार। जी हाँ, नवरात्रि की 9 नाइट्स और गोल्ड जीतने के 9 गोल्डन चांसेस। तो आज किसकी किस्मत खुलती है, चलिए जानते हैं। मेरे साथ है कॉल पर ध्वनित जी। नमस्ते ध्वनित जी।
2: नमस्ते,
1: कैसे हो आप?
2: बस फर्स्ट क्लास, आप बताओ?
1: मैं भी एकदम बढ़िया। तो आप बताइए, नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी है?
2: एकदम जोर से।
1: क्या बात है, तो चलिए, आपकी डांडिया तो रेडी है और हमारे सवाल आपके लिए रेडी है फॉर मिर्ची 9 लख का हार कॉन्टेस्ट ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। तो आपके लिए जो ये सवाल है, बहुत ही आसान सा बॉलीवुड का सवाल है। आपने नवरात्रि के तो बहुत सारे गाने सुने ही होंगे, उसमें से एक गाना है चोघड़ा थारा। तो वो ये जो गाना है चोघड़ा थारा, कौन सी मूवी का गाना है?
2: लव यात्री।
1: पक्का?
2: पक्का।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। और इसके साथ आप आ जाते हो हमारे फाइनल राउंड में और आपको जीतने का मौका मिलेगा सोने की चेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हैप्पी नवरात्रि।
2: थैंक यू, सेम टू यू।
1: और दोस्तों, अगर आप भी जीतना चाहते हो नवरात्रि के इस सुनहरे अवसर पर गोल्ड चेन जीतने का मौका, तो आज ही रजिस्टर कीजिए मिर्ची 9 लख का हार में, ब्रॉट टू यू बाय वीरानी ज्वेलर्स। टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे DM भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। चलिए तब तक सुनते हैं अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: साथ जीतू राज।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी। अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @MirchiJeeturaj। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज, 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

अब ये ब्रेकिंग न्यूज देने वाले रिपोर्टर्स को अगर खुद ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा बनना पड़े तो शमशांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा है। OTT पर अक्टूबर 9 को आ रही है इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिलर रिपोर्टिंग लाइव, जिसमें नजर आएंगी परिणीति चोपड़ा। अब जरा इमेजिन करते हैं कि एक रिपोर्टर जो सिर्फ एक स्टोरी कवर करने निकली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में खुद एक डेंजरस सिचुएशन में फंस जाती है। और साथ में है देवेन भुजानी, अदिल हुसैन और शेखर सुमन। वैसे मुझे तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जर्नलिज्म, दूसरी तरफ सस्पेंस, और बीच में वो सवाल कि सच तक पहुंचने के लिए ये कितना रिस्क ले सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्राइम थ्रिलर जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, या वो जहां एक ऑर्डिनरी पर्सन खुद डिटेक्टिव बन जाते हैं? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और अब इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा ब्रेक देते हैं, क्योंकि अगला गाना है एक ऐसी फिल्म से जहां एक फोन कॉल ने पूरी कहानी ही बदल दी थी। तो अभी आप भी जरा याद करना इस मूवी की स्टोरी क्या थी। फिलहाल बजाते हैं ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्दी और हमारे यहाँ पर नवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है, लेकिन उसी के साथ हमारी आपको गोल्ड चेन देने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। जी हाँ, मिर्ची पर इस बार मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स, यानी नवरात्रि की 9 रातें और 9 मौके गोल्ड चेन जीतने के। तो चलिए देखते हैं आज मेरे साथ कौन जुड़ने वाले हैं टू विन गोल्ड चेन। आई हैव विथ मी The wonderful रीमा जी। नमस्ते रीमा जी।
2: नमस्ते जी,
1: कैसे हो आप?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे हो?
1: एकदम बढ़िया। तो डांडिया खेलने के लिए तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो वैसे आपका डांडिया का फेवरेट गाना कौन सा है?
2: ऐसे कोई फेवरेट नहीं है, बड़ा सभी अच्छे लगते हैं।
1: तो कुछ भी बजा दो आप डांडिया खेलना चालू कर दोगे, राइट? चलिए, तो आपको मैं पूछूंगी मिर्ची 9 लख का हार इस कॉन्टेस्ट के लिए एक आसान सा सवाल, उसका अगर आप जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, तो तैयार हो आप?
2: बिल्कुल।
1: चलिए, तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, उड़ी उड़ी जाए उड़ी उड़ी जाए, ये शाहरुख खान की किस मूवी का गाना है?
2: उड़ी उड़ी जाए।
1: जी ठीक है, मैंने आपको हिंट भी दिया। राज
2: रईस का है शायद।
1: पक्का? क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। रईस का गाना उड़ी उड़ी जाए, नवरात्रि का सबसे पॉपुलर गाना। इसी के साथ आपको हमारे फाइनल राउंड में आने का मौका मिलेगा टू विन गोल्ड चेन। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन।
2: ऑलराइट, थैंक यू।
1: तो चलिए, आपसे हमारी मुलाकात होगी जल्द ही। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो राइट डाउन नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJ_SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स। दिस इज द फ्यूचर मैन।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. Na vidvala burga. Milci, burga.
1: Hello?
2: हेलो सर, मैं सिचुएशन में फंस गया हूँ सर. आप जो भी है मुझे टाइम कम है सर. ये दो है, एक लाल है, एक हरा. इसमें से कौन से काटना है? एक लाल एक हरा, कौन से काटूं सर?
1: टाइम कितना है
2: सर? डेढ़ से दो मिनट.
1: पीछे हो गया
2: सर. फिर कटेगा कैसे?
1: भारी सामान
2: तो नहीं है सर.
1: रंग बता.
2: एक लाल एक हरा.
1: अब एक काम करो, कैंची लो कहीं से.
2: एक सेकंड, कैंची ले ली सर. लेकिन सिचुएशन है.
1: आस
2: पास है लेकिन हिलने का टाइम नहीं है.
1: हिल नहीं रहे. एकदम टच भी करेगा तो फट जाएगा.
2: हाँ बिल्कुल.
1: फटना नहीं चाहिए. आस पास के लोगों को भी सिक्योर करना है.
2: ठीक है.
1: हरा काट के देख.
2: धीरे से. 1, 2, 3. Congratulations.
1: ताली बज रही है. कौन है?
2: ये ताली बजा रहे हैं सर. ये रिबन काटना था ना. मैं ये शोरूम का उद्घाटन था तो मुझे बुलाया था. अब दो रिबन लगे हुए थे, एक लाल और एक हरा, तो समझ में नहीं आ रहा था कौन सा काटे. ठीक है,
1: शोरूम का रिबन काट रहा है.
2: हाँ.
1: तो मैं इसी को पूछा फिर तूने.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इट्स हॉट.

फॉल इज फाइनली फॉलिंग दोस्तों, शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, न्यू जर्सी में फाइनली फॉल आ रहा है। वो हवा में हल्का हल्का क्रिस्प फीलिंग, सुबह का थोड़ा कूल टेम्परेचर और ट्रीज का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। एंड सडनली इवनिंग ड्राइव भी थोड़ी सिनेमेटिक लगने लगी है। तो मुझे ना फॉल की सबसे अच्छी बात ही ये लगती है कि सीजन आपको फोर्स नहीं करता कुछ करने के लिए, बस एनवायरमेंट खुद ही थोड़ा और ब्यूटिफुल हो जाता है। कॉफ़ी थोड़ी और बेटर लगने लगती है, वॉक थोड़ी और लॉन्गर हो जाती है, हुडी फाइनली जस्टिफाई होती है, और रोड ट्रिप के बिना भी ट्रीज देखकर लगता है कि यार सीन तो सेट हो चुका है। मतलब मन बिल्कुल ऐसा करता है कि तुम ही देखो ना ये क्या हो गया। तो बताइए आपके लिए परफेक्ट फॉल मोमेंट क्या है, चाय, लॉन्ग ड्राइव, वॉक, पम्पकिन स्पाइस, या बस घर की विंडो से ट्रीज को देखना। डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और वेदर ने तो ऑलरेडी साउंड ट्रैक मांग ही लिया है, तो अगला गाना उसी फॉल ड्राइव मूड के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का एक ऐसा काउच जहाँ बैठने के बाद सेलिब्रिटीज को अपने आंसर से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन संभालने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं वो देखकर क्या हो जाए उनके साथ। शाम शर्मा लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और बात हो रही है कॉफी विद करण की, जिसका अगला सीजन 9 आने वाला है। और कहाँ जा रहा है कि ये तो फाइनल सीजन होने वाला है। वैसे मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि यार इतने सालों से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इस काउच पर आ रहे हैं। नॉट जस्ट बॉलीवुड बल्कि और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट सेलिब्रिटीज, एंड ऐसे सारे एपिसोड्स तो धमाकेदार रहे ही है। तो कभी रैपिड फायर में कुछ फनी आंसर्स, तो कभी अनएक्सपेक्टेड कन्फेशंस, कभी फ्रेंडशिप की केमिस्ट्री, तो कभी एक छोटा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो यार अगले दिन पूरे इंटरनेट की हेडलाइन ही बन जाता था। लेकिन मुझे इस शो की सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगती है कि उसका जो रैपिड फायर राउंड होता था, ओ हो, कोई भी बड़ी सीरियल जो आती थी ना जिसमें एकदम कलेश होता था, उससे ज़्यादा कलेश उस रैपिड फायर राउंड में होता था। क्योंकि कुछ सवालों के जवाब देने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बहुत ही कम सेकंड्स मिलते थे, और कुछ बहुत ही खतरनाक जवाब बाहर आते थे। तो दोस्तों इमेजिन करो कि आप भी करण जौहर के उसी काउच पे हो, और वो पूछते हैं वन बॉलीवुड सेलिब्रिटी यू वुड लव टू हैव कॉफी विद, तो आपका जवाब क्या होगा मुझे ज़रूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और कॉफी के साथ द बॉलीवुड गॉसिप तो हो गई, तो चलिए बॉलीवुड म्यूजिक की बारी। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतू राज एज ए फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वॉज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान्स की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है, एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के 3 हीरो कहे जा सकते हैं। एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले, एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतू राज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतू राज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: Breaking news, Mirchi पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

0: presented by Virani Jewelers.
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मर्जी सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों, नवरात्रि की तैयारियां हमारी तो जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है और साथ ही में आपको गोल्ड जितवाने की भी तैयारियां शुरू हो चुकी है विद मिर्ची 9 लख का हार ब्रॉट टू यू बाय विरानी ज्वेलर्स। तो चलिए देखते हैं आज किसके किस्मत में गोल्ड की चेन है। आई हैव विद मी नेशल जी। हेलो नेशल जी।
2: आई
1: एम डूइंग गुड, हाउ आर यू?
2: आई एम ऑल्सो वेरी गुड।
1: तो नेशल जी, हमारे काफी सारे लिसनर्स को पता है आप हमारे कंसिस्टेंट विनर रहे हैं, जिससे आज का सवाल मैं आपको थोड़ा टफ पूछने वाली हूँ, चलेगा?
2: थोड़ा इजी रखो मेरे लिए।
1: देखिए दोस्तों, नेशल जी इज दैट वन पर्सन जो हमारे साथ कई सालों से जुड़े हैं और बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट लगातार करते रहे और बहुत सारे प्राइजेस भी जीते। तो नेशल जी, हमारे कंसिस्टेंट विनर रह के कैसा लगता है आपको?
2: मुझे लगता है कि मैं कस्टमर हूँ रेडियो में।
1: देखिए, आपकी तरफ से बाकियों को भी बताइए, कई बार लोगों को लगता है कि अरे रेडियो मिर्ची पे कॉन्टेस्ट हो रहा है, सच्ची में सोना मिलता भी है क्या? तो आप ही बताइए लोगों को कि क्या कॉन्टेस्ट होता है और कितनी धूम मचती है।
2: नहीं नहीं, सोना तो मिलता है, बहुत ज्यादा मिलता है।
1: बहुत नेशल जी के लॉकर में पड़ा हुआ है सारा। तो चलिए देखते हैं आज नेशल जी जीतते हैं कि नहीं। तो नेशल जी, आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, वैसे आपके लिए थोड़ा टफ सवाल है, लेकिन चलिए फिलहाल थोड़ा बहुत आसान सा सवाल भी बना के बताती हूँ आपको, ठीक है? और अगर ये सवाल का सही जवाब देते हो तो आप क्वालिफाई होता हमारे फाइनल राउंड के लिए एट विरानी ज्वेलर्स। ओके
2: ओके,
1: ठीक है, चलिए। तो आपके लिए जो सवाल है वो है, नवरात्रि का एक गाना है, हे शुभारंभ हो शुभारंभ, ये गाना कौन सी मूवी का है?
2: स्काई पोस्ट है।
1: पक्का?
2: हे शुभारंभ, हाँ स्काई पोस्ट है, यस।
1: ओहो नेशल जी, हर बार आप जीत जाते हो, लेकिन इस बार आपने गलत जवाब दे दिया। ऐसा मैं नहीं कह सकती, आपने सही जवाब दिया है।
2: अरे
1: चलो, थोड़ा डराना तो बनता है आपको नेशल जी। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो हमारे फाइनल राउंड के लिए जिसमें आप जीत सकते हो सोने की चेन। कॉन्ग्रेचुलेशंस।
2: ओके वाओ, थैंक यू सो मच।
1: और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज ही टाइप कीजिए नवरात्रि, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi. और नेशल जी, जाते जाते हम मिर्ची पे क्या बोलते हैं?
2: सुनते रहो रेडियो मिर्ची।
1: क्या बात है, इट्स हॉट।
0: मिर्ची 9 लख का हार प्रेजेंटेड बाय विरानी ज्वेलर्स।

पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। शाम शांतालाई सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पिक्चर छोड़ो, अब ऑडियंस कह रही है कि भाई मेरे पास तो 5 मिनट है, उतने में जो दिखाना है दिखा दो। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में यही एक इंटरेस्टिंग चेंज हो रहा है, क्योंकि एक टाइम था जब हम 3 घंटे की बॉलीवुड पिक्चर देखते थे, फिर आया OTT और हमने कहा कि चलो 8 एपिसोड्स बिंज कर लेते हैं। फिर रील्स ने हमें 30 सेकेंड में स्टोरी दिखाने की आदत लगा दी, और अब लग गई तो लग गई है आदत। और अब आ चुका है माइक्रो ड्रामा, मतलब छोटे छोटे एपिसोडिक शोज जहां एपिसोड्स को सिर्फ कुछ मिनट्स मिलते हैं। मेट्रो का वेट कर रहे हो, कॉफी बना रहे हो, लंच ब्रेक हो, 5 मिनट मिले तो निकालो फोन और कहानी आगे बढ़ाओ। और मजे की बात तो यह है कि इंडिया के टॉप 12 फ्री एंटरटेनमेंट एप्स में अब 6 माइक्रो ड्रामा एप्स भी है। यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म स्टोरीज है ना, अब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ट्रेडिशनल OTTs को जोरदार टक्कर देने वाले हैं। और मुझे सबसे फनी बात तो इसका इवोल्यूशन लगता है, मतलब 3 घंटे की पिक्चर से 8 आवर का बिंज, और अब 5 मिनट ड्रामा। यानी अटेंशन स्पैन छोटा हो गया है दोस्तों, लेकिन ड्रामा का एपेटाइट वो बिल्कुल फुल साइज है। तो आप भी बताओ कि आपको प्रॉपर 2-3 घंटे की पिक्चर चाहिए बिंज वर्दी सीरीज, या 5 मिनट में प्यार धोखा बदला दी एंड भी चलेगा। DM ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH आए। और अब शॉर्ट फॉर्म की बातें बहुत हो गई, चलिए अगला गाना पूरा का पूरा सुनते हैं। रेडियो ऑन मिर्ची, इट्स

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: अच्छा तो ये कब से लगने लगा था आपको, क्या अजीब अजीब हरकतें कर रहा है?
1: हेलो
2: बेटा बेटा एक सेकंड, पहले मैं अंकल से बात कर लूं जिन्होंने बताया आपके बारे में, एक सेकंड होल्ड करिए। अच्छा मुझे बताइए, शुरू में ही चिल्लाना शुरू कर दिया था ये, पहले कहीं दिखाया था आपने डॉक्टर को? उल्टे जवाब देता है और नहीं सब हो जाएगा सब।
1: मैं
2: हाँ बेटा बता दिया मुझे अंकल ने, बता दिया। हाँ बेटा कैसे हो?
1: तुम कौन हो?
2: वही चीज मेमोरी भी है ना लॉस। बेटा तुम आओगे मेरे पास, यहाँ आ जाओ ठीक है?
1: क्यों आ जाऊं?
2: अग्रेशन क्यों आ जाऊं? ये सब इसके टैबलेट्स आती हैं, वो सब दे देंगे। अच्छा एक काम करो, मैं आ जाऊं तुम्हारे पास?
1: तुम्हें बात करनी है?
2: आपसे ही बात करनी है ना, अंकल ने बताया ये धीरे धीरे ठीक होगा। बेटा मेरे पास आओ, आप मेरे पास आ जाओ।
1: क्यों, मैं तुम्हारे पास कौन हूं? तुम
2: वो ये मेमोरी पहचानना भी देनी है अंकल।
1: अरे किसका अंकल?
2: बेटा तुम्हारा अंकल।
1: ये कब आ गया?
2: वो आप ही को नहीं पहचान रहा, कह रहा ये कब आ गया। फोन काट दिया।
1: हेलो
2: बेटा बात सुनो, जब तक इलाज नहीं कराओगे फिर गुस्सा खत्म नहीं होगा ना।
1: कौन सा इलाज कराना है? लेवो का इलाज नहीं कराना, फोन रखो तुम।
2: वही लेवल 7।
1: अरे तो तुमको बात किससे करनी है? तुम्हें पता भी, तुमने किसको फोन मिलाया है जिससे तुम्हें बात करनी है? मैं वो नहीं हूँ।
2: अग्रेशन।
1: कौन हो तुम मेरे?
2: डिफेंड कर रहा है अपने आप को कि कौन हो तुम मेरे।
1: अरे तू है कौन, तू ये बता।
2: ये है 9th लेवल, अगर अभी नहीं आए ना, गोली नहीं खाई तो तुम और खराब हो जाओगे।
1: ऐसा है, अपनी गोली डाल तो अपनी गांव में, ठीक है?
2: वो ये लेवल 10 क्रॉस कर दिया है। देखो बेटा आना पड़ेगा, अंकल ने कहा है ना। फिर
1: ऐसा है, इंजेक्शन लगाना है ना, तो जिसने तेरे को मेरा नंबर दिया उसको और खुद साथ आ। देखो सारे मैं इंजेक्शन देता हूँ।
2: ओह माय गॉड, लेवल 15 वो सबके
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट विद मिर्ची, फ्रेश माल।
4: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।
1: हेलो न्यू जर्सी, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और नगाड़े संग ढोल तो तैयार है ही। नवरात्रि की हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है, स्पेशली आपको सोने की चेन देने का, क्योंकि इस बार वीरानी ज्वेलर्स प्रेजेंट्स मिर्ची नौ लक्का हार। तो दोस्तों, नवरात्रि की नौ रातें यानी नौ गोल्डन चांसेस टू विन गोल्ड चेन। तो चलिए देखते हैं आज किसकी किस्मत में गोल्ड की चमक है। आज मेरे साथ है दीपू जी। नमस्ते दीपू जी।
2: Hi.
1: How are you?
2: I'm good. How are you?
1: I am doing good. तो क्या नवरात्रि में डांस करने की तैयारी शुरू हो चुकी है?
2: अभी हम लोग ड्रेसअप करके we are going for गरबा।
1: देखिए ये लोग गरबा शुरू भी हो चुका है।
2: आप गुजराती है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है गरबा का।
1: नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये सिर्फ गुजरातियों का ही जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ये पूरे इंडिया का, ये पूरे NRI कम्युनिटी सबका हक बनता है कि उतनी ही धूम के साथ हम सब नवरात्रि खेले और बहुत ज्यादा मस्ती करें, बहुत ज्यादा डांडिया खेले, गरबा खेले आप सबके साथ, राइट?
2: चलिए, का थोड़ा स्पेशल होता है।
1: बिल्कुल, तो आप जैसे कि मतलब वो बोलते हैं ना, नवरात्रि जब ही आती है हम सब गुजराती बन जाते हैं। कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता कौन गुजराती है कौन क्या है, सब गुजराती बन जाते हैं। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी के साथ, इसी फेस्टिवल की खुशी में आपको सोने की चेन जितवाने का हमारा तो प्लान है, लेकिन देखते हैं कि आप जीत पाओगे कि नहीं। तो मैं पूछूंगी आपको बॉलीवुड का बहुत ही आसान सा सवाल नवरात्रि से रिलेटेड ही, और उसका सही जवाब देते हो तो फिर आप क्वालिफाई होते हैं हमारे फाइनल राउंड के लिए, ठीक है? चलिए, तो आपका सवाल बहुत ही आसान सा है, और ये सवाल का गलत जवाब दिया ना तो मतलब बदनाम कर रहे हो आप, राइट? तो देखो अभी तो अभी अभी एकदम फुल गुजरात की आन बान शान आपके साथ। चलिए ठीक है, तो बॉलीवुड का एक गाना है ढोलीड़ा ढम ढम ढमक बाजे, बहुत ही प्यारा सा गाना है, गंगूबाई का गाना है। इसकी एक्ट्रेस कौन है?
2: आलिया भट्ट अपनी।
1: क्या बात करो, आलिया भट्ट थी?
2: हाँ,
1: अपनी आलिया भट्ट अपनी,
2: अरे 100 पर, हाँ मींस अपनी।
1: अरे अपनी ही आलिया भट्ट है, और सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस, आप क्वालिफाई होते हो गोल्ड चेन जीतने के लिए।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो आज गरबा में और भी जोर से नाचना, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे फॉर द फाइनल राउंड एट वीरानी ज्वेलर्स। और दोस्तों, अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो टाइप कीजिए नवरात्रि और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए 9033647244, या फिर आप मुझे RJ मिर्ची सिद्दी को हमारे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID। और तब तक के लिए, अभी बहुत ही माहौल बन चुका है नवरात्रि का, तो अगला गाना भी नवरात्रि वाला, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची नौ लख का हार, प्रेजेंटेड बाय वीरानी ज्वेलर्स।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

नोटिस किया है कि हर दिन ना अर्जेंसी नहीं होती। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज का दिन ना उन्हीं में से है जहां सब कुछ अभी नहीं थोड़ी देर बाद कैटेगरी में लगता है और ये परफेक्टली ओके है क्योंकि आज हर किसी को ना हीरो बनने की जरूरत नहीं, कभी कभार बस प्रेजेंट रहना ही काफी होता है। तो अगर आज आपने भी अपने आप को थोड़ा स्लो चलने दिया है तो समझो कि आपने भी एक बहुत ही सही डिसीजन लिया। तो आप भी जरूर बताना कि आज आपने किस चीज को कॉन्शियसली स्लो रखा है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मैंने अपनी प्लेलिस्ट को थोड़ा सा धीमा कर दिया है क्योंकि ये जो शाम है वो बहुत ही सुहानी है, तो यार हर बार हाई बीट्स अर्जेंट बीट्स की जरूरत नहीं है। तो चलिए ये धीमा सा गाना सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिख तो गाने हर दुनिया देती ताने वैसे इन्हें दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म लग गई है जिसका नाम है दृश्यम 3। नाउ फॉर पीपल जिन्होंने दृश्यम इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है, जीतूराज एज अ फिल्म रिव्यू पर्सन कहेगा कि दृश्यम 1 एक कल्ट थी, दृश्यम 2 ओकी डोकी थी, अब इट वाज अ पावरफुल फिल्म, बट दृश्यम 3 देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब दृश्यम जो है वो क्लासिक जॉनरा में आ जानी चाहिए। अजय देवगन रॉक्स। फॉर पीपल हु फॉलो टिकट खिड़कियों का रिपोर्ट्स, इंटरनेशनली अजय देवगन की फिल्मों को इतनी अच्छी नहीं मिलती ओपनिंग जितनी खान की फिल्मों को मिलती है। अजय देवगन की पहली फिल्म है जिसे इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी ओपनिंग मिली है एंड हिंदुस्तान में भी अजय देवगन के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के तौर पर यह फिल्म ऑलरेडी रिकॉर्ड बुक्स में जाएगी। अजय देवगन यू आर अ रॉक स्टार। फिल्म के तीन हीरो कहे जा सकते हैं, एक तो फिल्म के जो बैकग्राउंड म्यूजिक करने वाले अमर मोहिले है, फिल्म का BGM इज द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म, फॉलोड बाय डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सुधीर के चौधरी। जिस तरह से सुधीर चौधरी अजय देवगन की आंखों को पैरेलली इस्तेमाल करता है पर्दे पर, यू हैव टू सी इट ऑन अ बिग स्क्रीन एंटरटेनर थिएटर, तेरी चॉइस ऑफ थिएटर में जाके देख ले। एंड ऑफ कोर्स द थर्ड एंड द बिगेस्ट हीरो ऑफ द फिल्म दृश्यम इज अजय देवगन। विजय साळगावकर क्या करता है। फिल्म जिन्होंने फॉलो नहीं की उनको पहला हाफ जरा सा स्लो लग सकता है, बट सेकंड हाफ देखने के बाद तेरे को पता चलेगा कि पहला हाफ स्लो होना क्यों जरूरी था। जो ओरिजिनल स्टोरी राइटर है जीतू जोसेफ, उनकी तारीफ करनी ही बनती है। डायरेक्टर अभिषेक पाठक, वन मोर एस अप योर स्लीव। प्लीज किसी के तेरे को कहानी या स्पॉयलर्स बताने के पहले जाकर थिएटर में देख ले एंड तू खुद अपना रिव्यू जीतूराज को भेज देना ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज। हमारी टीम की तरफ से अजय देवगन की एक और फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल काइंड्स कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान इज वेरी बिग रिकमेंडेड, दृश्यम 3 बाय जीतूराज 3.5 मिर्चीज के साथ। अजू बेबी यू रॉक स्टार, वी लव यू।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

मिर्ची मंडे ग्रूव्ड ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशनी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स म्यूजिक ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशनी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.

0: डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: मिर्ची ROCHI रोशी रोशी मिर्ची रोशी
2: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
3: It's festive season. Whenever you are feeling sad and lonely, just remember, आप गरीब भी हो, आपके पास उतने पैसे हैं नहीं जितने आप चाहते हो, और आपके पास उस तरह का पार्टनर भी नहीं है जो आप चाहते हो। मतलब I'm just saying कि ऐसा नहीं है कि festive season अकेला आपका जीना मुश्किल कर